0: Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
1: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
0: Kya matlab?
1: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
1: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
0: Ab to karna hi padega, madam.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: Agar kisi cheez ko dil se chaho,
4: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
5: डील कहाँ?
4: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
5: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे, बिकॉज डील्स दूर नहीं, पास है.
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.

भाई राम जी का तो नहीं पता, लेकिन मैं ये जरूर आपको बता सकती हूँ कि गणपति गणेश जी जो हैं, जो कि हम आज गणेश चतुर्थी है और उसी के शुभ अवसर पर सब गणपति मना रहे हैं, आई नो, लेकिन गणपति जरूर ये बता सकते हैं कि अगर आपका घर या फिर आपका वर्क प्लेस या कहीं भी आप जा रहे हो उसको आप सफाई से ढंग से नहीं रखोगे तो गणपति भाई बोलेंगे कि ब्रो आई एम नॉट गोइंग इनसाइड, टाटा बाय बाय। तो आप जो शुभ ब्लेसिंग्स की जो आप बात कर रहे हो एंड योर विशिंग कि गणपति आपको ब्लेस करेंगे, आप चाहे कितने भी दिया जला लो, अगरबत्ती जला लो, लेकिन अगर आपके ऑफिस में बड़े बड़े डस्ट बनीज हैं और हेयर बॉल्स हैं और कूड़ा पड़ा हुआ है पिछले 2 हफ्तों से और सफाई नहीं हो रही है तो गणपति बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्योंकि ये पता है मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई केम अक्रॉस दिस रील टुडे वेयर दिस स्पिरिचुअल गुरु कॉल जय मदानशी वॉज टॉकिंग अबाउट की अपियरेंस के बारे में। मैंने कहा फिजिकल अपियरेंस तो चलो ठीक है कि भगवान ने सबसे बड़ी गिफ्ट दी है हमको हमारी बॉडी और हमारी सूरत, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो भगवान भी हमारा ध्यान नहीं रखेगा। फर्स्ट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड देन भगवान विल टेक केयर ऑफ अस। सेम थिंग गोज विथ योर हाउस, योर ऑफिस, स्पेशली इफ़ यू ओन अ वर्क प्लेस बिजनेस। अगर आपके ढंग से कोई सफाई नहीं रख रहा है, मतलब देन देर इज नो पॉइंट ऑफ ऑल दिस, है ना? दैट इज वाई आई डोंट नो हु नीड्स टू हेयर दिस, बट आई होप यू आर लिसनिंग एंड यू डू समथिंग अबाउट इट। आगे बढ़ते हैं गाइस, दिस वन इज अ मलंग सजना।

भाई मैंने ज्ञान तो शुरू में आते ही बोल दिया कि अगर आप अपने सराउंडिंग्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो गणपति बिल्कुल भी नहीं आएंगे, राम भी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। तो गाइज वो सब तो मैंने बोल दिया, लेकिन एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई कि मैं हूँ कौन। टू माई रेगुलर लिसनर्स, ऑफ कोर्स यू ऑल नो मी, दिस इज एंड टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम, वेल दिस इज इपी द हिपी ओनली ऑन फनेजर रेडियो 104.9 FM एंड दिस इज माई शो। चलो सब साथ में गाते हैं। एग्जैक्टली अब मेरे पास गिटार है नहीं, ड्रम्स है नहीं, तो थोड़ा म्यूजिक इफेक्ट के लिए मुंह से ही निकालना पड़ता है। कोई बात नहीं यार, इट्स कॉल्ड स्कैटिंग, FYI, इन केस अगर आपको नहीं पता। इट्स अ वेरी ओल्ड जैज ट्रेडिशन बाय द वे। अगर आप पता है वो ट्रेडिशन कैसे आई थी? दिस रियली रियली फेमस सिंगर एंड ट्रम्पेट प्लेयर कॉल्ड लुईस आर्मस्ट्रॉन्ग, वो जब ना एक गाना बजा रहे थे, उनके म्यूजिक स्टैंड के सामने से कागज नीचे गिर गए। अब उनको याद नहीं सारे शब्द, तो उन्होंने शूप डब डिब डिब डिब ऐसे करके उन्होंने वर्ड्स ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद भाई दैट थिंग बिकेम ट्रेडिशन एंड इट इज नाउ अ ट्रेडिशन ऑफ ऑल जैज सिंगर्स टू काइंड ऑफ डू दैट। अगर आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, भाई किशोर कुमार हैज डन अ लॉट ऑफ दैट इन ऑल द ओल्ड बॉलीवुड स्टफ। आर डी बर्मन हैज उषा उत्थप हैज डन इज एवरीबडी इज डन इट। तो इट्स नॉट लाइक ओनली एन अमेरिकन थिंग, इट्स देयर इन बॉलीवुड टू। बॉलीवुड हैज रिप्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स फ्रॉम अमरीका। तो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, उससे हम कोई रिलेट नहीं कर रहे, ठीक है? तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए, जस्ट आई वॉन्टेड टू लेट यू नो, ट्रैफिक अभी काफी चिल हो रखा है बिकॉज आई जस्ट ड्रोव फ्रॉम 75। सो इफ यू गाइज आर ड्राइविंग एंड लिसनिंग टू माई वॉइस, आई होप यू हैड अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर इवनिंग। भाई दिस नेक्स्ट अनाउंसमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा। अगर आप किसी गाड़ी या ट्रक एक्सीडेंट में फंस जाते हैं वाइल यू आर ड्राइविंग ऑन दीज खाली खाली रोड्स, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं स्पीड करता हूँ लेकिन घड़ैक एक एक्सीडेंट हो गया एंड यू हैव बिन हर्ट वेरी बैडली, देन यू नीड टू कॉल पर्सनल इंजरी अटर्नी ओमर ख्वाजा। ही विल फाइट फॉर यू एंड यू डोंट पे एनीथिंग अनलेस ही विन्स। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। कॉल 4693005046, 4693005046 और विजिट अटर्नी ओमर .com। आफ्टर द सॉन्ग आई विल टेल यू सम मोर।

भाई गाइस, डिनर टाइम हो चुका है। आपने खा लिया कि नहीं अपना डिनर? भाई मैंने तो यहाँ बैठ के, स्टूडियो में बैठ के, अपना वही बोरिंग सा ग्रिल्ड चिकन एंड मैश पोटेटोज विद सम नाइस सॉसेस ऑन टॉप विद सम वेजिटेबल्स खाया, बिकॉज यू नो आई एम ऑन दिस लाइक हेल्थ जर्नी एंड दैट्स व्हाट आई डिड। हाउएवर, इफ यू हैवन ईटन येट देन यू शुड डेफिनेटली गो चेकआउट Page 3 ईटरी, क्योंकि उनका मेन्यू तो बहुत सही लग रहा है। They've got kebabs, chaat, fusion bites, mocktails. आपको जो चाहिए just Google and you can find the menu and just look at it. It looks so good and they are right here on Hub 121. हाईवे से भी दिखता है आपको 121 से if you're driving. And this is where bold Indian street food meets modern flair. चाहे आप ब्रंच करें, लंच करें, डिनर, डेट नाइट, वट एवर यू नीड, Page 3 इज गॉट इट. विजिट Page 3 ईटरी एट हब 121 और एक्सप्लोर मोर एट Page 3 ईटरी.com. और कई बार पता है उनके स्पेशल इवेंट्स में ना वो लोग फ्री खाना भी देते हैं। इज़न्ट दैट अमेजिंग? यू शुड डेफिनेटली गो चेक इट आउट। द नेक्स्ट सॉन्ग दैट आई एम गोना प्ले फॉर यू गाइस, गाइस यू नो व्हाट द नेक्स्ट सॉन्ग इज, द रियली स्पेशल वन, बिकॉज आई एम गोना प्ले यू वन ऑफ माई सॉन्ग्स। एंड द रीजन आई एम प्लेइंग दिस फॉर यू आज इज बिकॉज गेस व्हाट, दिस हैज बीन सबमिटेड इन द ग्रैमी बैलेट। यस, एंड यू नो इफ इफ इट्स लाइक्ड बाय द पैनलिस्ट और व्हाटएवर, देन मे बी दिस इबी द हिपी ऑन फनेजर रेडियो कैन बी अ ग्रैमी विनर। सो प्लीज आप मेरे लिए भी प्रेयर करिए, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मेरे लिए भी थोड़ी सी दुआ शुआ मांग लीजिए। तो एन्जॉय दिस बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट।

0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
1: भूख लगी
2: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
3: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
5: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
6: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
8: मैं हीरो।
9: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455252।

0: Thing. Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
1: Helpline, how may I help you?
2: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
1: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Documents या parcel भेजनी है?
8: हाँ.
7: घर relocate करनी है?
8: हाँ.
7: गाड़ी भी transport करना है?
8: हाँ भाई हाँ.
7: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर.
9: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर move का perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
10: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
12: तुमसे मिलके दिल का है.
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

भाई आई डोंट नो हाउ यू डू इट बट दैट्स हाउ वी डू इट। अरे मैं थारा परदेसी। भाई हम परदेस में तो रह रहे हैं, पता व्हाट्स हैपनिंग ऑन माय फीड दीज डेज ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक? इट्स ऑल दिस इंडियन हेट। आई डोंट नो वेयर ऑल दिस इज कमिंग फ्रॉम। देयर इज लाइक दिस न्यू वेव ऑफ लाइक हेट, और मे बी इट्स जस्ट माई एल्गोरिदम। आई डोंट नो इफ योर एल्गोरिदम इज शोइंग दैट, बट इट्स लाइक ओह ऑल आवर जॉब्स आर गोइंग, ऑल दिस इज गोइंग, ऑल दैट इज गोइंग। एंड समटाइम्स आई थिंक आई एम लाइक यार ये तो हर मतलब 10-12 साल में किसी ना किसी कंट्री में होता ही रहता है। आज US में हो रहा है, 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसके पहले कैनेडा में हुआ था, मतलब ये उसके पहले ब्रिटेन में हुआ था इन द 80s एंड एवरीथिंग, UK में हुआ था। एंड इट वॉज लाइक इट्स लाइक इट हैपन्स ऑल द टाइम, सो वी जस्ट गॉट लाइक चिल ओके, बिकॉज भाई हेट से हेट ही पैदा होता है, हेट से प्यार नहीं पैदा होता है। सो रिमेंबर दैट गाइज, वेन यू शेयर हेट इन द वर्ल्ड हेट कम्स बैक टू यू, बट इफ़ यू शेयर लव इन द वर्ल्ड लव कम्स बैक टू यू ऑलवेज। तो गाइज लव की बात करते करते अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू योर हार्ट एंड एवरीथिंग। तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज ब्रिंगिंग ए फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। इट्स लाइक अ मेंबरशिप प्लान, इट्स कॉल्ड पैशन हेल्थ डायरेक्ट एंड इट इज जस्ट $85 अ मंथ। वी ऑल नो हेल्थ केयर इज वेरी एक्सपेंसिव इन अमेरिका एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स कैन गो लाइक ऑलमोस्ट क्लोज टू लाइक $400 अ मंथ। सो इन केस यू डोंट हैव दैट एंड यू कैन नॉट अफोर्ड इट, दिस इज अ ग्रेट प्लान। योर मेंबरशिप इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप्स, प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेलीहेल्थ वेन अप्रोप्रिएट, केयर कोऑर्डिनेशन, प्लस 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो कॉल या फिर टेक्स्ट 214-666-6259 या फिर विजिट passionhealthphysicians.com। एंड जस्ट रिमेंबर गाइज, दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस, देर आर एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस, सो मेक श्योर यू कॉल देम अप एंड गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन बिफोर यू जस्ट यू नो साइन अप फॉर एनीथिंग। ऑलवेज डू योर रिसर्च। तो ये गाना सुनते हैं एंड देन आई विल मीट यू अराउंड 8 o'clock, बिकॉज 8 o'clock आपको पता है ना क्या है, हमारा गिव अवे है, और हम लोग आज हम लोग वही मूवी वाला गिव अवे खेलेंगे। वेयर आई विल टेल यू अ स्टोरी एंड देन यू हैव टू टेल मी व्हाट मूवी इज इट, एंड आई एम गोना सेलेक्ट 2 विनर्स टुडे, सो एंजॉय दिस वन।

0: भाई हम 30 सेकंड में ब्रेक में जाने वाले हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है ना, सोनू निगम का कॉन्सर्ट आ रहा है, इसलिए मैंने आपको सोनू निगम का गाना बजाया था। इट्स ऑन 26 सितंबर। जल्दी जल्दी अपनी टिकट्स ले लो, दे आर ऑन टिकट मास्टर, और कॉल 855-360-SHOWS। ओके, मेक श्योर यू गेट योर टिकट फॉर सितंबर।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: होचो
9: होको
8: होचो
9: होको
8: होचो
9: इट्स होको।
6: अरे बस भी करो यार।
9: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
6: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है, एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
10: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में, वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
11: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
12: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
13: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
13: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
13: ये क्या होता?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
16: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
17: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशन, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
18: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

0: guys, we are back. Yes, you are listening to Ippy the Hippie only on Fun Asia Radio 104.9 FM. Yes, मैं हूँ Ippy the Hippie, यहीं पे हूँ guys. और ये मेरा show है. चलो साथ में गाते हैं. An evening in Dallas. That's right, guys. वो तो of course the amazing, absolutely evergreen Sonu Nigam. And you know, that is my favorite version of Sonu Nigam. He was so young and so good looking and such an adorable, like little innocent child wali vibes. Also, like, you know, he was really doing something. And us zamane mein jab indie music ka koi naam bhi nahi tha, people didn't even know what indie quote unquote was, he was making his own records. And from there he got invited on to Bollywood and so on and so forth. Agar aapko wo wala gana nahi yaad hai, so that's Tu by Sonu Nigam from his solo album. And you know, the video features Bipasha Basu, of course, and she was absolutely sensational. By the way, did you know she's kind of making a comeback? She put on a lot of weight and everything after her baby, but now what I heard was she's dropped all that weight and now she's kind of coming back to Bollywood after like 10 or 15 years after getting away from it. So, hey, she was amazing and we would love to see her back. So, guys, without further ado, let's go play our giveaway game. Aaj ka giveaway, pata hai kahan se hai? Aaj ka giveaway hai from the Mirage Lounge. Yes, the same one as last week. Like I said, do winners ko main choose karungi, theek hai? और दो विनर्स जो मेरे चूज होंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा. पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी एंड द सेकंड पार्ट इज हु इज द एक्टर इन द मूवी, हु इज द लीड एक्टर इन द मूवी. ठीक है, दैट्स इट. वेरी इजी, इट्स नॉट इवन दैट हार्ड. तो मिराज लाउंज के बारे में थोड़ा सा बता दे. दे हैव हुक्कास, डिलिशियस बाइट्स, कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट्स एंड हैप्पी आवर फ्रॉम मंडे टू थर्सडे 11 AM टू 6 PM प्लस लेडीज एंड कॉलेज नाइट. तो आप क्या जीत सकते हैं? इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन, यू गेट ए $20 डिस्काउंट ऑन अ $50 बिल. दैट मीन्स पहले आपको $50 खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद उसमें से आपको $20 का डिस्काउंट मिलेगा. ओके, टू विनर्स विल बी सिलेक्टेड. तो गाइज, विदाउट फर्दर डू, लेट्स प्ले. मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, आपको मुझे मूवी का नाम बताना है और एक्टर का नाम बताना है. सो हियर वी गो. वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार अवे लैंड, वैसे तो इट्स नॉट दैट फार, इट वाज लाइक अ वेरी प्रोमिनेंट सिटी इन इंडिया. उस मूवी का नाम भी उसी सिटी से है. तो ये तो मैंने हिंट पहले ही दे दिया. तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस गाय हु वाज लाइक अ जर्नलिस्ट और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी हु वाज एन एयर होस्टेस. ठीक है, अब वो एयर होस्टेस, उन दोनों में बीच में बड़ा प्यार था, शादी वादी करने वाले थे और लड़का बिल्कुल ब्रोक टाइप का था, लेकिन लड़की अच्छे पैसे वगैरह कमाती थी. शी वॉज फ्रॉम अ वेल्थी हाउस. तो लड़की एयर होस्टेस थी, लेकिन एक दिन लड़की की जो कॉलीग थी उसको, शी यूज टू बी सम काइंड ऑफ यू नो लाइक अ ड्रग म्यूल और लाइक अ स्मगलर म्यूल और समथिंग लाइक दैट, एंड शी हैड टू सेंड अ पैकेज टू समबडी इन द सिटी वेयर द गर्लफ्रेंड यूज टू स्टे. तो वो रोने बैठ गई, कहती है अरे मेरे पास तो टाइम नहीं है, ओ माय गॉड, आई एम गोना बी इन सो मच ट्रबल, कैन यू प्लीज सेंड दिस पैकेज आउट. सो दिस गर्ल गोज लाइक या बेब श्योर आई विल हैंडल इट, डोंट वरी. तो वो प्लेन से उतरती है अपनी शिफ्ट विफ्ट खत्म करके, और वो जो गर्लफ्रेंड है वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है हु इज लाइक दिस ब्रोक जर्नलिस्ट बाय द वे. वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि हे बेब, मेरे को ना एक पैकेज कुरियर करना है, प्लीज तुम यहाँ से पिकअप कर लो मुझे एयरपोर्ट से, और ये पैकेज भी लेके तुम कुरियर कर दो. तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, फाइन, आई डू दैट. तो उसको पैकेज देती है. वो लड़का जो है पैकेज को डायरेक्टली कुरियर करने की बजाय वो अपने घर लेके जाता है, और उसका घर में जो उसका रूममेट होता है उसका पेट खराब होता है, उसको कंटेनर चाहिए होता है, मतलब यू नो, वो डॉक्टर के पास जाता है. आ गया हमारे पास कॉल, लेट्स सी हु इज द फर्स्ट कॉलर. हाय, कैन यू हियर मी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अपना नाम बताइए. एक्चुअली वेट, आई थिंक आई नीड टू पुट यू ऑन एयर, हैंग ऑन वन सेकंड. हाय, कैन यू हियर मी? हेलो
1: हेलो,
0: हाय, कैन यू हियर मी?
1: Yes, I can hear you.
0: Okay, पहले तो अपना नाम बताइए and then tell me the name of the movie. I'm selecting two winners, so you only have to answer the first part of the question.
1: So my name is Siddharth.
0: Siddharth, okay, go for it. Siddharth, what is the name of the movie?
1: Delhi Belly.
0: Yes, congratulations, Siddharth. Yes, Delhi Belly. What an iconic movie, isn't it? Listen, yeah. I have to take another call for my second winner. In case this call gets disconnected, just call me back in 5 minutes so I can take your
1: information. But dusra part to pucha nahi aapne, it's Imran Khan.
0: अरे वो नहीं बताना था ना, वो तो मेरे को दूसरे कॉलर के लिए चाहिए था ना.
1: ओके, आई एम सॉरी अबाउट दैट.
0: तभी तो मैंने बोला दूसरा पार्ट मत बताना.
1: ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है.
0: कोई बात नहीं, आई एम गोना टेक अनदर कॉलर, कॉल मी बैक इन 5. ओके
1: ओके
0: ओके. हाय, कैन यू हियर मी?
1: यस आई कैन.
0: ओके ग्रेट, तो अपना नाम बताइए एंड दूसरे पार्ट का क्वेश्चन बताइए. हु इज द एक्टर इन द मूवी?
2: My name is Swapnil and then the actor is Imran Khan.
0: Very nice. Swapnil, congratulations. Aap jeet chuke hain. Swapnil and Siddharth, aap dono jeet chuke hain Mirage Lounge se giveaway. You have got $20 off on a bill of $50. So Swapnil, stay on the line. I'm going to play a song and then I'll take your information, okay?
2: Yep, thank you.
0: Guys, aap ye gaana enjoy kariye. We will be right back.

0: गौरे से दुआ लगती है मन।
1: It's not working. It's just not happening.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer and fresher home.
3: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट
4: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव
3: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स
4: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन
5: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
8: वी नीड टू टॉक
9: अब क्या हुआ
8: नथिंग इट्स नॉट यू
9: ओह नो
8: इट्स द डिस्टेंस
9: डिस्टेंस वी लिव 10 मिनट्स अपार्ट
8: अरे इट्स एक्चुअली नॉट यू इट्स दैट ड्राइविंग ऑल द वे फॉर माय सैल्स हॉट चिकन
7: इरविंग दैट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इज ऑफिशियली ओवर सैल्स हॉट चिकन इज नाउ इन इरविंग योर क्रिस्पी चिकन लोडेड सैंडविचेस एंड बोल्ड सैल्स फ्लेवर्स जस्ट गॉट अ होल लॉट क्लोजर सैल्स हॉट चिकन इरविंग सेम ऑब्सेशन लेस डिस्टेंस
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या

भाई नमक है इश्का की मतलब रसगुल्ला है इश्का की गुलाब जामुन है या हलवा है इश्का. Somebody should make a song called हलवा है इश्क. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी ए सुपर डुपर हिट, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे ही गाने बहुत पॉपुलर चलते हैं. बाकी बाकी का मुझे नहीं पता, ये ऐसे वाले गाने तो बहुत ही ज्यादा चलेंगे. इश्क एक हलवा है, थिंक अबाउट इट. इफ देर आर एनी सॉन्ग राइटर्स आउट देर, यू गाइज यू नीड टू गेट ऑन दैट ट्रेन एंड राइट दैट सॉन्ग. ओके, तो जैसे गाइज हम आगे बोल रहे थे, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स एंड न्यूरोसाइंस अगेन. लास्ट वीक अगर आपने मेरा शो सुना, देन वी कवर टू बेसिकली थिंग्स. वन इज ऑफ कोर्स द न्यूरोसाइंस ऑफ अट्रैक्शन, वॉट मेक्स someone attracted to someone scientifically saying. And then the second thing is what happens when you quote unquote fall in love scientifically in terms of hormones and addiction and all of the other things. Now, today we are going to ask a little different question. What happens in the brain when the relationship moves past that intense early rush and turns into real attachment? जब आप एक्चुअली अटैच हो जाते हो, ये सारा अट्रैक्शन एंड फॉलिंग इन लव वाला फेज खत्म हो जाता है एंड यू एक्चुअली स्टार्ट बॉन्डिंग, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड एक्चुअली मेक्स टू पीपल लास्ट लॉन्ग एंड बिल्ड अ लाइफ टुगेदर. द शॉर्ट इन्वॉल्व आंसर बेसिकली हैज़ टू मेन हॉर्मोन्स. ओके, जिसका नाम शायद आपने पहले सुना भी होगा, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. ठीक है, नाउ the full story involves one of the strangest and most delightful animal studies. Yes, this is not a human study. It is an animal study in behavioral science called prairie voles. Yes, voles, you guys. Stick with me. पहले चलो इस बारे में थोड़ी बातें और करेंगे, लेकिन एक छोटा सा गाना सुन लेते हैं पहले, उसके बाद आके. ठीक है, बहुत है यार, अभी तो 10 बजे तक घूमे. चल.

गाइस, वी आर बैक. अगर आप, जैसे मैंने बोला था, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूरोसाइंस एंड व्हाट मेक्स रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग. तो मैंने बोला था कि देर आर बेसिकली टू मेन हॉर्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रोसिन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वोल्स, बिकॉज ऑनेस्टली ये वोल्स है क्या? वोल्स पता है क्या है? एक रोडेंट स्पीशीज है. दे आर लाइक रैट्स. आई एम टेलिंग यू, स्टे विद मी गाइज. आई नो इट साउंड्स काइंड ऑफ वाइल्ड, बट स्टे विद मी. Because honestly, this is the best, apparently this is the best thing that has happened to relationship sciences. Okay, so check it out. There are two very closely related rodent species. These are called prairie voles and mountain voles. Genetically, they are very, very similar. But behavior-wise, dono bilkul opposite hai. Prairie voles are most comically monogamous. ठीक है, मतलब अगर उन्होंने एक पार्टनर, द काइंड लाइक पेंगुइन्स, एक पार्टनर चूज कर लिया, उसी पार्टनर के साथ रहेंगे. ठीक है, एंड दे फॉर्म लाइफ लॉन्ग पेयर बॉन्ड्स, एंड देन दे आफ्टर मेटिंग दे शेयर लाइक नेस्टिंग ड्यूटीज. मतलब यू नो, आफ्टर मेटिंग देन दे लाइक घर वर संभाल रहे हैं, वेरी डोमेस्टिकेटेड. मतलब चूहे भी डोमेस्टिकेट होते हैं. तो अ मेल प्रेरी वोल विल अग्रेसिवली प्रोटेक्ट हिज पार्टनर एंड इवन शो डिस्ट्रेस लाइक बिहेवियर वेन सेपरेटेड फ्रॉम हर. हाउ रोमांटिक, जस्ट लाइक अ बॉलीवुड हीरोज यू गाइज. माउंटेन वोल्स जो है वो थोड़ा सा अलग है. ऑन दी अदर हैंड, दे आर कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड इन लाइक बॉन्डिंग, पेयर बॉन्डिंग. मोनोगमस बोल के उनके मतलब है ही नहीं कोई. दे मेट एंड दे मूव ऑन, देन दे फाइंड अ न्यू पार्टनर विद नो लास्टिंग अटैचमेंट. तो जो रिसर्चर्स हैं हमारी, स्यू कार्टर एंड लैरी यंग, इन लोगों को पता करना था कि भाई ऐसा क्यों. दोनों तो सेम टाइप के एनिमल्स हैं, लेकिन एक तो बड़े अच्छे से बॉन्ड करता है, मतलब घरेलू है, और दूसरा तो मतलब इज कैसनोवा. सो व्हाट इज द डील? द आंसर केम डाउन टू टू हॉर्मोन्स, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. तो प्रेरी वोल्स जो पहले वाले हैं हमारे, डोमेस्टिकेटेड जो चूहे हैं, दे हैव मोर रिसेप्टर्स फॉर दीज टू मेन हॉर्मोन्स इन देयर ब्रेन रिवॉर्ड रीजन्स. मतलब उनके ब्रेन में जो रिवॉर्ड रीजन्स है, जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते बात किया था, दे हैव मोर ऑफ दोज. एंड इन अ सीरीज ऑफ वेरी फेमस एक्सपीरियंस, दे काइंड ऑफ ब्लॉक्ड दीज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन रिसेप्टर्स कुछ कुछ इन चूहों के दिमाग में एंड इन द प्रेरी वोल्स, एंड देन द बॉन्डिंग बिहेवियर जो इनका था, दैट वैनिश्ड ऑल टुगेदर. द वोल्स दे स्टॉप forming like exclusive partnerships and they were like more into situationships. And then ek aur striking experiment mein kya hua, they use gene therapy or they increase this in the other chuha jo mountain wale hain, and then they realize ki bhai ye wale chuhe to bade acche se bond kar rahe hain, kyunki jab hum inme vasopressin aur oxytocin bada dete hain, then they bond. So now think about this, hum aur bhi baat karenge iska result kya hua after the song.

गाइस, वी आर बैक. भाई, रिलेशनशिप वगैरह से तो याद आया कि सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या है इन ऑल रिलेशनशिप्स, एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, हैविंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. इसीलिए अगर आप वेदर यू आर एन इंडिविजुअल और यू आर पार्ट ऑफ अ फैमिली और यू आर जस्ट यू नो ए डबल इनकम नो किड हाउस होल्ड, देन यू नीड टू रीच आउट टू माई टाइम इक्विटी या फिर विच इज़ लेड बाय CPA सुधीर पाई, विच हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, पर्सनलाइज ग्रोथ सोल्यूशंस. वेदर यू आर लुकिंग फॉर रिटायरमेंट, लॉन्ग टर्म वेल्थ गोल्स, आई थिंक दिस इज द प्लेस टू गो. द अर्लियर यू थिंक द बेटर ऑफ यू विल बी इन योर रिटायरमेंट. इट्स नॉट अबाउट आप कितने पैसे डाल रहे हो स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 50. इट्स अबाउट हाउ अर्ली यू स्टार्टेड. इट डजेंट मैटर हाउ मच यू पुटिंग इन इट, बट द अर्लियर यू स्टार्ट, रिमेंबर इंटरेस्ट ऑलवेज कंपाउंड्स. ओके, सो स्टार्ट अर्ली सो यू कैन इन्जॉय द बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट. विजिट mytimeequity.com और कॉल 4697021272, 4697021272. आई विल प्ले दिस सॉन्ग एंड देन वी आर गोना गो इन टू अ लिटिल ब्रेक, एंड व्हेन यू कम बैक then we will complete the चूहो वाली कहानी. एग्जैक्टली, आपने सही सुना, चूहो वाली कहानी.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
3: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
4: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना उसका सिग्नेचर मिल गया सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो फेमस निहारी सिजलिंग ग्रिल्स क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो विजिट signaturecuisine.net सिग्नेचर क्विजिन हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है
6: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन
7: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस
8: तुमसे मिलके दिल का है
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन
7: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क
9: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

So guys, ब्रेक में जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट रैट्स. नो आई एम किडिंग. वी वर टॉकिंग अबाउट, वेल टेक्निकली वी वर टॉकिंग अबाउट रैट्स, बट वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड न्यूरो साइंस. एंड देन आई वॉज टेलिंग यू ए लिटल स्टडी ऑन वोल्स विच आर बेसिकली अ स्पीशीज ऑफ रोडेंट्स, उर्फ रैट्स. ठीक है, लेकिन जैसे हमने बोला था कि दो टाइप के ऐसे रोडेंट्स होते हैं ना, उनको ये वाले दो केमिकल्स दिए, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, एंड यू नो दे रियलाइज कि जिसमें ये ज़्यादा केमिकल है दे बॉन्ड बेटर, और जिनमें ये कम है दे बॉन्ड लेस. तो ह्यूमंस आर ऑफकोर्स वे मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन चूहाज. हाउ एवर स्टडीज हैव शोन दैट ऑक्सीटोसिन के जो लेवल्स होते हैं दे राइज इन न्यू कपल्स. And the higher the oxytocin has been associated with increased amounts of trust, increased amounts of staring, ek dusre ki aankhon mein dekhna, or your face or their face, and even synchronized behavior between partners. Yani ki you guys start mirroring each other. Have you heard that theory ki एक कपल जो अपने बहुत टाइम से साथ में है एंड दे आर लाइक कम्प्लीटली इन सिंक, दे ऑल्सो स्टार्ट लुकिंग अलाइक, ईदर देयर हेयर और देयर मैनरिज्म्स और देयर बिहेवियर. यस, पीपल स्टार्ट डूइंग दैट विदाउट इवन रियलाइजिंग इट. वन रियली वेल नोन स्टडी फाउंड दैट कपल्स जिनका नया नया प्यार होता है हैड ऑक्सीटोसिन लेवल्स दैट एज कम्पेयर टू न्यू पेरेंट्स बॉन्डिंग विद देयर चाइल्ड. आपने बोला देखा है कि वन व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न एक स्किन टू स्किन टच कराते हैं डॉक्टर्स, यू नो, फर्स्ट टू द मॉम एंड देन टू द डैड, राइट? सो इट्स सेइंग लाइक दैट काइंड ऑफ अ थिंग. ओके, द रोमांटिक बॉन्डिंग एंड द पेरेंट चाइल्ड बॉन्डिंग में दोनों में जो ऑक्सीटोसिन लेवल्स होती हैं वो ज़्यादा होती है. इट्स ऑलमोस्ट द सेम. Isn't that interesting? Sometimes we think about it और हमें पता भी नहीं चलता ये सारी चीज़ें. तो I will tell you more about this, लेकिन one little song.

तो गाइज आगे बढ़ते हुए वैसोप्रेसिन की बात करते हैं. ऑक्सीटोसिन की हमने तो बात कर ली, बट देर आर टू बॉन्डिंग केमिकल्स रिमेंबर. सो वैसोप्रेसिन अपीयर्स टू प्ले अ लार्जर रोल इन मेल्स अक्रॉस मेनी स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस. बाय द वे आई डोंट नो हाउ मच यू आर टोटली इन टच विद योर एल्गोरिथम, बट मेरे एल्गोरिथम में ना इतनी सारी बकवास रील्स आती जा रही है, उसमें सब लोग ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को लेकर रील्स बना रहे हैं. ओह गर्ल्स, दिस इज हाउ यू गेट आउट ऑफ सिचुएशनशिप्स एंड डेटिंग ऐप वाला चक्कर. तो गाइज दिस इज काइंड ऑफ लाइक दैट, बट ऑब्वियसली डोंट ट्रस्ट रील्स एंड यू शुडंट ऑलवेज ट्रस्ट मी ऑल्सो, बिकॉज आई ऑल्सो टेक्निकली गेट माई इन्फो फ्रॉम द इंटरनेट, बट आई मेक इट इंटरेस्टिंग. तो वैसोप्रेसिन अपीयर्स टू प्ले अ लार्जर रोल्स इन मेनी स्पीशीज एंड वॉट डज इट कॉज. मतलब वैसोप्रेसिन जब बढ़ जाता है मेल्स में तो वट डज इट कॉज. इट कॉजेज मेड गार्डिंग बिहेवियर, दैट प्रोटेक्टर वाली स्पिरिट, टेरिटोरियल, ओके, प्रोटेक्टिव बॉन्डिंग, ओके, लाइक द गाइज विल बी लाइक अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा. सम ह्यूमन स्टडीज हैव लिंक्ड वेरिएशंस इन वैसोप्रेसिन रिसेप्टर जीन टू डिफरेंसेस इन पेयर बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप स्टेबिलिटी. तो उन्होंने ये मतलब ये हुआ कि अगर आपकी रिलेशनशिप को ज़्यादा स्टेबल करना है तो आपके मेल पार्टनर में वैसोप्रेसिन ज़्यादा होना चाहिए. ओके, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज द इफेक्ट साइजेस इन ह्यूमंस आर मच स्मॉलर एंड मेसियर देन वोल्स. व्हाट, ह्यूमन अटैचमेंट इज शेप्ड इनॉर्मसली ऑफकोर्स बाय अदर फैक्टर्स की कल्चर, अपब्रिंगिंग, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, और सिर्फ हॉर्मोन्स भी नहीं है, बहुत कुछ है. आई एम लाइक फ्रॉम अ सोशियोलॉजी बैकग्राउंड सो आई नो दिस बिकॉज ऑल ऑफ योर सराउंडिंग्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है, तो और भी बात करेंगे इस बारे में, लेकिन एक छोटा सा सॉन्ग का.

गाइस अभी बज गए 9:21। हम 10 मिनट में ब्रेक में जाएंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले वी विल टॉक अबाउट हाउ अटैचमेंट स्टाइल्स आर एक्चुअली बिल्ट बियॉन्ड हॉर्मोन्स। देर आर अदर वेरियस लेयर्स टू बॉन्डिंग, ठीक है, एंड अटैचमेंट स्टाइल के लिए भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स आते हैं। अ कॉन्सेप्ट दैट कम्स फ्रॉम डिवेलपमेंटल साइकोलॉजी। सो ऑल माई श्रिंक फ्रेंड्स हु आर लिसनिंग, दिस वन यू प्रॉबली नो टू दिस, ओके। दिस इज ओरिजिनली फ्रॉम द वर्क ऑफ जॉन बोलबी एंड मैरी एंसवर्थ। आई थिंक मैंने इनके बारे में पहले भी डिस्कस किया हुआ था। और बेसिक आइडिया इज द वे यू बॉन्डेड विथ योर प्राइमरी केयर गिवर्स, ठीक है, ये मैंने पहले भी बात करी हुई थी इसके बारे में। द वे यू बॉन्ड विथ योर प्राइमरी केयर गिवर्स, प्राइमरी केयर गिवर्स कौन होते हैं जो बचपन में आपका ध्यान रखता है? दे कुड बी योर पेरेंट्स, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहे हो देन दे कुड बी योर ग्रैंड पेरेंट्स, अगर आप फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रहे हो देन दे कुड बी योर फॉस्टर पेरेंट्स, यू नो इट कुड बी एनीवन, बट हुएवर वाज देयर टेकिंग केयर ऑफ यू व्हेन यू वर अ चाइल्ड, द वे यू बॉन्डेड विद दैट पर्सन एज एन इन्फेंट क्रिएट्स ए वर्किंग मॉडल फॉर हाउ सेफ एंग्शियस और अवॉइडेंट यू फील इन क्लोज रिलेशनशिप्स लेटर इन लाइफ। अगर आपके प्राइमरी केयर गिवर्स के साथ आपका डर वाला कोई रिलेशनशिप था, लाइक यू वर ऑलवेज अफ्रेड टू लाइक जस्ट ओपन अप टू योर पेरेंट्स, तो यू विल ऑल आई मीन बाय डिफॉल्ट यू विल काइंड ऑफ रेप्लिकेट द सेम काइंड ऑफ बॉन्ड विथ योर पार्टनर ऑल्सो। यू विल बी अफ्रेड टू ओपन अप टू योर पार्टनर एंड ब्रॉडली स्पीकिंग एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन ऑल द टाइम, ठीक है। If you are like a needy kid and you're like mummy, mummy, mummy, then you will be that kind of a partner. As you grow up, you'll find you'll be the anxious attachment person, okay? Broadly speaking, psychologists describe 3 or 4 type of attachment styles. One is secure, anxious, we've talked about this. Secure is, okay, the best one, of course. Anxious, avoidant, and sometimes a combination of all this called disorganized ya fearful avoidant. So, is sab ka matlab kya hai? I will tell you after the break when you come back.

0: सारे गामा कारवां इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने।
1: एंड गाइज, हम अभी 2 मिनट में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि टेक्सास प्राइमरी केयर इज़ नाउ कॉल्ड लनॉक्सी मेडिकल। दैट्स राइट गाइज, इट इज़ फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य और पिछले 13 साल से दे हैव केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी। नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम और एक और फ्रिस्को लोकेशन। उनके पास पता क्या क्या है? प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स, हिमालयन मेट्सपा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ। दे आर ओपन 7 डेज अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM। यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट नीडेड। तो मेक श्योर गाइज यू गो चेक इट आउट। एंड दिस वन इज आपकी नजरों ने समझा, लेकिन मेरी आवाज़ में नहीं, जुनिदा गांधी की आवाज़ में। शी लाइक्स टू डू ऑल दीज कवर्स विच आर आई थिंक क्वाइट नाइस, आई लाइक इट टू। तो यू एंजॉय दिस वन।

गाइस इट इज 9:48 ऑन द क्लॉक. मैं आपके साथ सिर्फ 5 मिनट और रहने वाली हूँ क्योंकि मैं 10 बजे जाने वाली हूँ. तो आई स्टार्ट रैपिंग अप अराउंड 9:50. तो लेकिन गाइस जाने से पहले हम लोग जो बात कर रहे थे अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में एंड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, देर इज ए केमिकल ब्रिज हियर ऑल्सो विच इज इम्पोर्टेंट टू नोट. ऑक्सीटोसिन जो होता है इट ऑल्सो इंटरैक्ट्स विद अटैचमेंट स्टाइल. तो यू नो सबको लगता है कि अटैचमेंट स्टाइल इज वन थिंग, बट दीज केमिकल्स लाइक ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन दे ऑल्सो हेल्प टू डिसाइड वॉट काइंड ऑफ अटैचमेंट स्टाइल इज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड. सम रिसर्च सेज दैट ऑक्सीटोसिन कैन इन्हेंस एग्जिस्टिंग टेंडेंसीज जो आपके अंदर है. जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ट्रस्ट इशूज मतलब है, ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग हो रहा है बिटवीन सिक्योरली अटैच इंडिविजुअल, सो ऑक्सीटोसिन कैन एनहेंस इट एंड मेक इट बेटर. वाइल इन सम केसेज हैविंग जस्ट थोड़ा सा या जस्ट मोर कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट इन पीपल विथ मोर एंग्शियस और अटैचमेंट अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल. द ब्रेन्स रिस्पॉन्स टू बॉन्डिंग हॉर्मोन इज इन वन साइज फिट्स ऑल. वैसे बाय द वे इट्स फिल्टर्ड थ्रू योर एग्जिस्टिंग अटैचमेंट स्टाइल. तो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन वैसोप्रेसिन बोथ ऑफ दीज डेफिनेटली प्ले अ रोल, बट दे ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन वॉट काइंड ऑफ अटैचमेंट स्टाइल यू हैव. So, I hope you enjoyed today's discussion. I will see you tomorrow at 7 o'clock. Bye-bye. This is Ippi the Hippie signing off.

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 द जागो टाइम्स कमीशन जागो भी जगाओ भी एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया
2: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा

0: कभी सोचा है? हमेशा जैक के साथ जिल ही क्यों जाती है हिल पे? जैक के साथ जॉनी भी तो जा सकता है।
1: इट्स अ यूनिसेक्स सॉन्ग।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
0: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
1: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
0: सच में सब संभालेंगे?
1: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर। Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
5: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Fun Asia
5: Kaun hai ye log Kahan se aate hai ye
6: Jo Bollywood ka asli maza jante hain Fun Asia par hi aate hain

0: कमरे में घुस के।
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी।
1: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
3: मेरा?
2: हाँ।
1: प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: अजी सुनते हो?
5: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
6: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
7: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
6: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
8: तुमसे मिलके दिल का है।
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।
1: क्यों इतनी लंबी होती है चांदनी रात जुड़ाई?

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
5: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में? सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: race like me.
1: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
2: और एंटरटेनमेंट भी. स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया. फन एशिया.
3: मिक्सिंग इन द हाउस.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: यो यो यो यो, got an Ojla, Abby, y'all know baby.

खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू।

Să veram era, mă te ram rasă ta, pe căștite.

0: अरे घूट में सो गए
1: अभी भी एक घूंट बाकी है।

0: पीटेगा और एक ही दिन में हम सबको खत्म कर देगा।
1: बदराम वाट लगे रे पोरा जी।

0: 20 साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
4: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, only on Fun Asia Radio.

जिंदगी है वश नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

0: Oh, baby.
1: Variety is the spice of our station. Yeah, 104.9 FM.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: This is Uday Chopra and you are listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
3: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
2: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
3: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
4: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
5: Kaun hai ye log? Kahan se aate hai ye?
6: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
7: प्लेइंग द म्यूजिक यू वॉन्ट ऑल डे एवरी डे ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: bringing the community together. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: बेटा, 95% आए?
2: हाँ मम्मी.
1: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
3: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
5: सेम ऑर्डर अगेन? सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी? टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डॉलर्स. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Ruko jara, sabar karo.
7: Agla gana, full vibe badalne wala hai. Stay tuned to Funasia.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

Storming into a million hearts. 104.9 FM. Number one hit station.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.

0: बादशाह आपके लिए पक्की है ना, महाभारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया, अब उनका सर वो नेपाल में और धड़ियां रही है।
1: जय साहब।
2: जय
0: सृष्टि के जन्म से 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर बाकी।

0: दे दो, इधर अपना इलाका है, चाय पानी मौज से मिलेगा। बस इधर एक मिनट रुकेंगे। चल चल जा रुस्तम, बस बस बस बस दो आराम से। हाँ एक मिनट, एक मिनट पकड़िएगा जरा, बस एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे उसे। लीजिए।
1: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता, ये लड्डू के बदले ले जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
2: भाई
0: गलत बात है, चलो चलो चलो चलो। जय भोलेनाथ, मम्मी शाम को मिलता हूँ।
2: मेहरबानी करके कुछ कमा के घर भी ले आना, सब यात्रियों पे लुटा के मत आ जाना।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
6: होचो
7: होको
6: होचो
7: होको
6: होचो
7: इट्स होको.
8: अरे बस भी करो यार.
7: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
8: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है.
4: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Sathiya!
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
9: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
14: तुमसे मिलके दिल का है.
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
15: The voice of Sonu Nigam.

0: It is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, जो आपको यहाँ पसंद है. अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं. तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स. HEB, here everything is better.
9: ये तारा वो तारा हर तारा.
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
11: बेटा, 95% आए?
12: हाँ मम्मी.
11: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
13: मेरा?
11: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
13: वो
14: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
15: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Huzoor, aapko chunna hoga, hum ya ye biryani?
16: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
12: Aakhir kya hai is biryani mein?
16: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
17: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
18: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
17: Barista House, richness of biryani bliss.
19: जिंदगी एक रंगमंच है
6: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
11: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: Weekend ka plan, abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein. जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चकचाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।
0: Let's start this hour of the program. I will have the world news coming up for you in the half hour segment. Right now, let's get some stories from the annals of history that happened on today's date. By the way, today's date is the 15th of September. Wishing you all a lovely Tuesday morning. Giambattista Castagna was elected Pope as Urban VII. He died of malaria 12 days later. The shortest papal reign in the history of the Roman Catholic Church on today's date in 1590.

0: He's the one who said, the man who views the world at 50 the same as he did at 20 has wasted 30 years of his life. Prince Harry, the younger son of Charles, Prince of Wales and Diana, Princess of Wales, was born in London on today's date in 1984. Google.com registered its domain name on today's date in 1997. And ladies and gentlemen, it was the Ramones. Co-founded by guitarist Johnny Ramone, that influenced the rise of punk rock on both sides of the Atlantic Ocean. Today's date in 2004.
1: अरे यार, घर मिल गया।
2: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
3: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
3: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
4: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
3: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
5: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
3: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
5: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
4: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
2: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
1: हाँ।
2: घर रिलोकेट करनी है?
1: हाँ।
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
1: हाँ भाई हाँ।
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
6: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur duniya bhar mein trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
7: How may I help you?
8: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
3: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration. From top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with FunAsia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
2: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
1: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
2: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
1: ये क्या होता
2: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
3: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
4: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. मैं हूँ नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, मेरे दोस्तों, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
5: Call Namita Khemka at 347-449-4242.
6: Phone uthaye, number dawaye. 347-449-4242.
7: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280, Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
6: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy.
7: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
8: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer, enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
10: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
11: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
12: Hello, Texas Parivar. Kya aapko pata hai? There is a first-time home buyer program under Fannie and Freddie for conforming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
13: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
14: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
15: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।
16: Thank you very much for joining us in this final hour of our program. If you are late in joining us, well, we'll get you caught up. Don't worry about it. It's a beautiful Tuesday morning, the 15th of September, but our brutal heat continues. We had 100 degrees yesterday. Looks like it's going to be 100 today, which actually is a record. And we've had so far 50 triple-digit temperatures. Yay! 50 triple-digit days and absolutely no rain in the forecast. We are under a heat advisory. And of course, when we have that heat advisory, we also have a grass fire danger. 61 days of no rain. I'm sorry, I don't have a better forecast yet, even till for the rest of this week. But I do hope that you all will try and stay cool as we try and play the coolest music right here on the airwaves of the Fun Asia Network.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
8: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
8: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
8: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स।
7: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
9: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
10: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं।
11: डील कहाँ?
10: सिंपल, पास्या पे। इंट्रोड्यूसिंग पास्या, डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ। ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन।
1: डाउनलोड पास्या, दैट्स PAASYA टुडे, बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है।
12: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
1: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
17: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: Thank you very much for making me a part of your morning today. It is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
4: हाँ।
3: घर रिलोकेट करनी है?
4: हाँ।
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
4: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
5: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।

minutes past 10 o'clock. You're listening to Funisha Radio 104.9 FM. It's 15th of September or Tuesday ki morning. This is Gupshup Gali with me, Ramita. Or, you know, Tuesday bhi bada interesting din hai yaar. Kyun? क्योंकि मंडे को हमने ब्लेम तो कर लिया, फ्राइडे का वेट अभी भी लंबा है, तो आज खुश रहने का रीजन खुद ही अरेंज करना पड़ेगा ना बॉस। चाय आपकी, गाने हमारे और गपशप में आज बहुत कुछ फिल्मी है। वैसे फिल्म से याद आया, आपने कभी नोटिस किया है कि बॉलीवुड में वही चीजें रोमांटिक लगती है जो रियल लाइफ में हमें इरिटेट कर देती है। जस्ट लाइक बारिश में भीगना, बिना बताए घर आ जाना, ओ गॉड आई सो हेटेड, और एयरपोर्ट पर लास्ट मिनट ड्रामा। स्क्रीन पे तो हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ओ क्या प्यार है, और अपनी लाइफ में एक फोन नहीं कर सकते थे। तो आज मुझे बताइए कि बॉलीवुड ने कौन सी चीज ऐसे ही एवी रोमांटिक बना दी है जो आपके लिए बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, बट इट इज अ लिटिल अनोइंग। स्टूडियो की लाइन हमेशा आपके लिए खुली है। 9722355555 इज द नंबर ऑन द स्टूडियो। इस साइड है रमिता जो करने वाली है आज पब्लिक रिव्यू हमारे फिल्मी प्यार की। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू योर फेवरेट स्टेशन फनीशा रेडियो 104.9 FM।

0: दर्द। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
4: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
8: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
9: लैपटॉप में।
8: इन्वेस्टमेंट,
9: गूगल ड्राइव,
8: इंश्योरेंस, पासवर्ड्स?
9: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
8: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
3: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
10: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
3: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
11: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Rimita. अब गाना सुनते ही बारिश रोमांटिक जरूर लगी होगी, लेकिन ऑनेस्टली बताइए, रियल लाइफ में बारिश देखकर पहला थॉट क्या आता है? काश वो साथ होता, या फिर पैटियो के कुशंस अंदर कौन ले जाएगा? यू नो, बॉलीवुड में गीली जुल्फे, स्लो मोशन, परफेक्ट आई कॉन्टैक्ट, और हमारे यहाँ गीले मोजे, फॉगी ग्लासेस और गाड़ी में पड़ा हुआ वो छाता जो जरूरत पड़ने पर कभी काम नहीं होता, और हीरो अपनी जैकेट दे देता है, जरूर दे देता है यार, रोमांस है, दैट्स वेरी स्वीट, लेकिन फिर दोनों भीग रहे होते तो आखिर लॉजिक क्या बना, सोल्यूशन क्या है इसका? मैं रोमांस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस वेदर अप्रोप्रिएट रोमांस चाहती हूँ, यू नो दैट ड्रीम सीक्वेंस, ड्रीमी फील्स। अब बॉलीवुड ने इतना ड्रीम को ओवररेट कर दिया है। वैसे ड्रीम से याद आया, सपनों का घर अगर आपको लेना है तो आप क्या सोच रहे हो? इफ नॉट येट थॉट ऑफ इट, देन अभी सोच लो, क्योंकि ड्रीम होम मॉर्गेज विल बी हेल्पिंग यू, बिकॉज दे हैव बीन हेल्पिंग फैमिलीज सिंस 1998। आपके सपनों का घर आपके पास है और आप सोच रहे हो क्या करें। आप अपने पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशन, चाहे वो घर खरीदने के लिए हो, रिफाइनेंस करने के लिए हो, या फिर कोई भी डिस्कशन हो, इनिशियल डिस्कशन हो, सोच रहे हो कि अपने सपनों का घर कैसे बनाएं, तो कांटेक्ट करो हुसैन पंजवानी से। 9722455626 इज द नंबर वेयर यू कैन कांटेक्ट हुसैन पंजवानी और ड्रीम होम मॉर्गेज, और सिंपली यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com, बिकॉज दे आर मेकिंग ड्रीम होम happen.

10:36 by the studio clock. You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Rimita. अभी एक listener ने मुझे call किया और बताया कि यार रमिता बाहर इतनी गर्मी है और आप बारिश के बारे में बात करो. I know हमारे हर किसी के दिमाग में यही feel हो रहा है कि यार ये गर्मी जाएगी कब, अब क्या करें, Dallas का weather है, कुछ predict नहीं कर सकते. अब मैं तो रोमांस बॉलीवुड को रोमांटिसाइज कर रही थी, सपनों की दुनिया में रह रही थी और एज ए अननेसेसरी जो हमारे थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है बॉलीवुड, उसी के बारे में चर्चा कर रही थी. बट अगर हमें एक्चुअल में रियल शो चाहिए और रियलिस्टिक गाने चाहिए और सुनना भी है डालस के वेदर के माफिक गाने, तो लीजिए ये गाना उन लिसनर के लिए जिन्हें गर्मी बहुत पसंद है.

0: moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: हेलो वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
3: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है?
2: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
1: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking. अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?

0: 2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
2: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
1: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
2: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
1: सच में सब संभालेंगे?
2: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
3: बेटा 95% आए?
4: हाँ मम्मी।
3: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
5: मेरा?
3: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
5: वो
0: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply. Sadia!
6: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
7: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
8: तुमसे मिलके दिल का है।
7: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

47 minutes by the studio. I mean, 47 minutes past 10 o'clock. Today is September 15th, Tuesday, and you're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita. And if you want a partner, I'm sorry, main aapke saath radio pe reh sakti hu, aur wo bhi 12:30 baje तक. आज बात हो रही है चीज़ों की, उन चीज़ों की जो बॉलीवुड में बहुत ही रोमांटिक है बट रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, जैसे कि एयरपोर्ट गुडबाइज. यू नो, एयरपोर्ट में एक, मतलब हर बॉलीवुड फिल्म में एक टाइम में एक एयरपोर्ट सीन होता ही था. हीरो को लास्ट रियलाइज होता है कि अरे मैं तो उससे प्यार करता हूँ भाई. अरे भाई, पैकिंग कर रही थी जब वो, तब तुम क्या कर रहे थे? फिर हीरो भागता है, हीरोइन रुकती है, पूरा एयरपोर्ट इमोशनल. रियल लाइफ में आप डिपार्चर कर पर थोड़ा एक्स्ट्रा रुक जाओ ना, पीछे वाली गाड़ी का हॉर्न आपका बैकग्राउंड स्कोर बन जाएगा. और आपको तो बताइए, DFW में मैं एयरपोर्ट पर हूँ इज नॉट एनफ इन्फॉर्मेशन. टर्मिनल बताओ, डोर बताओ, अराइवल्स या डिपार्चर, लव लैंग्वेज की तो ऐसी की तैसी. लेकिन यार, आई नो बॉलीवुड ने हमें इमोशंस तो सिखाई है, गुडबाय वाली फीलिंग सच में इज हार्ड. तो मुझे बताओ कि आप वो एलाबोरेट फेयरवेल वाले हो या हग करके सीधा एक वन लाइनर लैंड करके टेक्स्ट कर देना. मैं बैठी हूं आपके इंतजार में और जानना चाहती हूं कि कौन सी ऐसी अननेसेसरी चीजें हैं जो बॉलीवुड ने ऐवे खामखा रोमांटिसाइज कर दिया है. This is Gup Shup Gali with me, Rumita, only on 104.9 FM, Phanisha Radio.

और कितना ये मसक्कली बन के पंख लहरा के उड़ना चाहोगे और उड़ते फिरोगे यार, क्योंकि अभी भी वक्त है, संभल लो, समझ लो, AI आ रहा है. जी नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, और ये मुफ्त का ज्ञान मैं नहीं दे रही हूँ, बट पूरा दुनिया, आई मीन पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है कि क्या AI विल रिप्लेस अस और नॉट, क्या हमें हमारे काम को AI पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा. और आप भी अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में और करियर में थोड़े से स्टक फील कर रहे हो, तो मैं वापस से मेरा वाला मुफ्त का ज्ञान नहीं दूंगी. सीरियस एडवाइसेस विल बी गिवन बाय द करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठा फॉर अ पावरफुल करियर ग्रोथ वर्कशॉप विच इज हैपनिंग ऑन सितंबर 19th इन डैलस. दे आर द 4-time TEDx स्पीकर्स एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेस एंड दे विल हेल्प यू टू रिपोजिशन योर वैल्यू, आपका लीडरशिप प्रेजेंस और भी मजबूत करने के लिए और अपने करियर को थोड़ा सा और पुश एंड देन एक्सेलरेट योर करियर यार. और सिर्फ ऐसे नहीं, विद डेफिनेटली विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. सो इफ यू वांट टू अटेंड दिस वर्कशॉप एंड गेन दैट कॉन्फिडेंस बैक और रीगेन योर सेल्फ बैक, यू नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ एट playitfull.com/Dallas. दैट इज playitfull.com/Dallas and start building your powerful career transformation today. You're listening to 104.9 FM Funny Shah Radio. This is Gup Shup Gali with Rimita.

आपका क्या होता है जनाबे अली, जब कोई डोरबेल बजाता है सामने से और आप दरवाजा खोलते हो और देखते हो उस बंदे को या बंदी को जिन्हें आप एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर मिल जाता और वो आता तो आप ज्यादा खुश होते यार। ये सरप्राइज विजिट्स क्या होता है? यू आर लिसनिंग टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो, दिस इज गपशप गली विद मी रमिता। और गपशप आज ये है कि बॉलीवुड में कौन सी ऐसी चीज की है रोमांटिक जो रियल लाइफ में है प्रॉब्लमेटिक। यानी यार मेरे घर पे सरप्राइज विजिट को, तो अगर कोई सरप्राइज विजिट पे आए तो मेरा पहला एक्सप्रेशन प्यार का कभी नहीं होगा, डैमेज कंट्रोल का होगा, क्योंकि सोफा पर लॉन्ड्री, किचन में डिशेस और मैं उस टी शर्ट में हूँ जो पब्लिक अपीयरेंस के लिए बिल्कुल अप्रूव नहीं है। फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन एक आप घर पे हो, मैं आ रहा हूँ, वैसा वाला इन्फॉर्मेशन या टेक्स्ट इज मच मोर अप्रिशिएटेड। है नहीं, सरप्राइज तब क्यूट है जब सामने वाले को भी अच्छा लगे, वरना आप रोमांटिक एंट्री ले रहे हो और वो अंदर इमरजेंसी क्लीनिंग मोड पर है। तो आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें सरप्राइज विजिट्स बहुत पसंद है, जो कि बॉलीवुड ने अगेन खाम खा रोमांटिसाइज कर दिया है, ओवर रेट कर दिया है, बट रियल लाइफ सिचुएशन That is more important. Studio का number is 972-235-5555. I want to know which team are you at? Surprise visit वाले या team appointment? और perfect surprise क्या होता है आपके लिए? Flowers, favorite food या आकर कहना तुम बैठो, मैं तुम्हारा किचन साफ कर देता हूँ।

0: ट्विस्ट करने का मौका बहुत जल्दी आ रहा है डैलस में, बिकॉज एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक इज ऑन द वे एंड इट इज गोना हैपन ऑन सितंबर 26 सैटरडे 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन, बिकॉज सोनू निगम विल बी हियर विथ हिज टूर कॉन्सर्ट रेवोल्यूशन, लाइव इन कॉन्सर्ट बाय सोनू निगम गाइज. टिकट्स अवेलेबल है एट द टिकट मास्टर, और बाकी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 855-360-SHOWS, दैट इज 855-360-SHOWS. एंड क्या ही बताओ यार, मिलेनियल हूं चाहे आप किसी भी जनरेशन से है, सोनू निगम के गाने आपके टॉप 5 सॉन्ग्स में एक तो जरूर होगी. तो अगर फेवरेट सॉन्ग्स विद दैट आइकॉनिक वॉइस एंड एवरीथिंग यू वांट टू come in and see and watch and experience it live, do come at the Credit Union of Texas Event Center on September 26th. और मैं आपको बता दूं कि इस इवेंट के एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर है फनीशिया नेटवर्क.
1: सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही, और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है. मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तेरा नाम लेती है.

0: You are listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gupshup Gali with me, Rumita. और हमारे साथ अभी वक्त हो चुका है, जुड़े हैं हमारे साथ पंडित ईश्वर जी, जो कि है डैलस के ट्रस्टेड नंबर वन एस्ट्रोलॉजर, दैट इज एस्ट्रोलॉजर ईश्वर जी, जिनका 25 सालों से भी ज़्यादा अनमैच्ड एक्सपीरियंस है इन एस्ट्रोलॉजी एंड साइकिक सॉल्यूशंस, होम एस्ट्रोलॉजी सर्विसेज, इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बर्थ हॉरोस्कोप एंड एवरीथिंग दैट सराउंड्स योर बर्थ चार्ट्स एंड फ्यूचर एज अ होल. और वी आर लकी टू हैव हिम ऑन एयर विद अस, और वो हमें बताएंगे हमारे इस वीक के राशिफल और उनके बारे में और भी जानकारी के लिए. आई हैव कनेक्टेड, सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ईश्वर जी टू फनीशा रेडियो. बताइए.
1: नमस्कार टू एवरीवन, वेलकम टू दिस वीक राशिफल फ्रॉम ईश्वर जी. सो फर्स्ट एरिस, द रिमेनिंग वीक ब्रिंग्स अ मिक्सचर ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. वर्क रिलेटेड मैटर कैन gradually move forward, especially if you have been waiting for any answers or decisions in your work or business or anything. Avoid reacting quickly to financially control unnecessary expenses. Family communications need some patience this week. The weekend looks more comfortable and peaceful. And Taurus, this week can be a reasonable, stable period. You may feel more confident, but an important personal and professional decisions will be there. Business people may receive useful communication or a new inquiry. Money flow is manageable, but avoid leading large amount without proper considerations. Family support will be helpful. Gemini, communication becomes very important. I can tell during this remaining days, meetings, phone calls, paperwork, or decisions related to work can bring progress. If you are looking for a job or business opportunities, keep following up instead of waiting silently. In relationship, misunderstanding can be avoided by talking less. And Cancer, you may feel some emotional pressure at the beginning of the period, but things can become lighter as the week progress. Family matter may require your attention. Career-wise, don't become discouraged by temporary delays or anything. Financially, be practical and avoid emotional spending. Leo, confidence, I can tell this week is very strong. This is a good time to take a responsibility and show your ability at work or in business. Avoid becoming too forceful with others. A disagreement with a colleague or family members can become bigger if you react immediately, so have patience when you talk. Financially, there can be positive movement, but keep balance between income and expenses. Virgo, the remaining week can bring gradual improvement. If you have been waiting for something related to work, money, documents signed, or any important decisions, you may start seeing movements this week. It's very positive. Don't allow small delays to create unnecessary worries. Health and routine should also receive attention. Libra, this is really favorable week for decisions, relationship, partnership, and business matters. Someone who your past may reconnect on older matter may come back or decisions. For the decisions, if you are planning a business arrangement, details, be very carefully with the details I'm communicating. Love and relationship can become more positive this week for them. Scorpio, You may have strong determination to finish pending work. This is a good period for clearing old responsibilities and getting organized. Be careful with financial decisions and avoid unnecessary arguments. Someone may misunderstand your words, but so speak very clearly. This weekend you can bring a sense of relief. Sagittarius, a positive movement is possible in career and business this week. Communication from travel plans or an important professional business meetings contact may develop. If you have been researching for new opportunities, keep making effort. Don't depend only on one option. Have 2-3.
2: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
4: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
8: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
9: उमर ख्वाजा।
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
11: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
12: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
13: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: हाय, दिस इज रणवीर शोरी एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।
0: You are listening to Phanisha Radio 104.9 FM. This is Gupshup Gali with me, Rumita. और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी पंडित ईश्वर जी, जो बता रहे थे आपके राशि फल इस हफ्ते का. And we still have three more राशिज, that is Capricorn, Aquarius and Pisces. उनकी राशि फल इस हफ्ते कैसी जाएगी वो बताएंगे हमें पंडित ईश्वर जी. पंडित जी, you're live and air. Please tell us what is the future that is looking like for Capricorn, Aquarius and Pisces in this week?
1: Yes, sure. For special Capricorn, responsibility may feel heavier during remaining week, but you are capable for handling them. Work or inquiries or extra considerations will come. Financially, this is a better period for planning rather than unnecessary risk taking. Family members may look to your support Aquarius, this period can bring important thoughts about future, career and financial. You may be thinking about making a significant changes. Work-related opportunities, business-related can develop, but have patience this week. Avoid spending and expecting immediate result. And the last, Pisces, the remaining week is favorable for family, spiritual activity and emotional healing. You may receive support from someone close to you. Career matter or opportunities may move slowly, but there is no need to lose confidence. Avoid taking unnecessary financial risk. The weekend looks more peaceful and stable, spending time with family. So my advice, keep faith, stay positive, have patience. That's it.
0: Thank you so much, Pandit Ishwarji. Just for our listeners to know, if they want a direct advice or suggestion or any consultation from you, please let us know where can they reach you, your phone number and your email address or website.
1: Sure. My website is www.astrologerishwar.com and my phone number 945-527-0897. That's it.
0: Thank you. Thank you so much, Pandit Ishwarji. We will talk to you again next week. Thank you. And for the listeners of Anisha Radio, the next song is for you to just carefree.

राम जी आके जरूर आपका भला करेंगे, पर अपने भले के लिए खुद भी तो सोचना है ना बहुत। क्यों? क्योंकि आपके भले में ही, आपके हेल्थ के भले में ही आपका भला है। दैट इज वाई टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक, जो कि इज प्राउडली सर्विंग द कम्युनिटी फॉर द पास्ट 13 ईयर्स, इज हियर एंड दे हैव अ ग्रोइंग ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, जो कि है लिनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय मनदीप आचार्य। डॉक्टर मनदीप आचार्य ने लिनॉक्सी मेडिकल और पूरी तरीके से नई तरीके से आपके सामने लेकर आए हैं, विथ प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सिटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स। और इन सब के बाद अगर अपने भले के बारे में सोचने के बाद खुद को थोड़ा पैम्पर भी करना हो, देन यू हैव द हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, एंड ट्रस्ट मी एवरीथिंग इज ऑल अंडर वन रूफ। ओपन ऑल द 7 days अ वीक, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक आप किसी भी टाइम वॉक इन कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। सो टेक्सस प्राइमरी केयर के लिनॉक्सी मेडिकल, विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को, is the thing that you should be looking out if you're concerned and or having any health issues or need a primary care just now.

You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Rumita with her show Gup Shup Gully. You know, फिल्मी हीरो चांद तारे लाने को रेडी होता था, लेकिन अडल्ट लाइफ में अगर अभी कोई बोले कि तुम सो जाओ, किचन मैं संभाल लूंगा, बस लव स्टोरी वही ब्लॉकबस्टर है। और इसी से गपशप गली का अगला गपशप यही है कि बचपन में जो पनिशमेंट लगती थी, आज वो लग्जरी कैसे बन गई यार। जल्दी सो जाओ, घर पर रहो, बाहर का मत खाओ, तब लगता था हमारी हैप्पीनेस के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी चल रही हो। बट अब अनइंटरप्टेड स्लीप, घर का खाना और एक शाम विदाउट एनी प्लान्स, जस्ट सोफे पे परे रहो और अपने बेड पे परे रहो और रील्स स्क्रॉल करते जाओ यार, वही प्रीमियम पैकेज लगता है। तो बचपन की कौन सी बोरिंग चीज़ आज आपकी फेवरेट है वो मुझे कॉल करके बताओ। 972-235-5555 इज द नंबर। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा सरप्राइज करने वाली हूँ इस घंटे में, बट क्या करें, अगले गपशप में यही चलता है एंड यही चलता है क्योंकि हम ही तो है जो हम गपशप से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Gup Shup Gali with me, Rumita. जहाँ पे एक सिंपल सा सवाल था कि बचपन में कौन सी चीज पनिशमेंट थी जो अब है लग्जरी. इस बारे में पूजा ने थोड़ी देर पहले कॉल किया इस गाने के चलते वक्त, और उन्होंने कहा कि बचपन में वो चंपी हेयर ऑयल, ऑयलिंग योर हेयर वॉज अ पनिशमेंट. बट अब देखो यार, ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस, लैक ऑफ चंपी, लैक ऑफ हेयर ऑयल करना, कैसी हालत हो गई है हमारी. चंपी इज वॉज नॉट फॉर द क्वालिटी ऑफ द हेयर और एनीथिंग दैट वुड ग्रो योर हेयर. इट वॉज ऑल्सो अ मसाज जो कि हमें हमारे दिमाग को ठंडा रखता था बचपन में. बट अभी जो जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टू गेट सॉर्टेड अ सिंपल चंपी, सोचो कितनी लग्जरियस लगती होगी अगर कोई आके बैठे बोले और बोले के सामने आके कि भाई आओ तुम्हारी थोड़ी मालिश कर दूँ, चंपी कर दूँ. यार वही है ना असली, असली लग्जरी अभी लाइफ की. डोंट वरी पूजा, आई एम श्योर विथ चंपी विदाउट चंपी आपकी लाइफ और आपके बाल उतने ही सॉर्टेड है. इतना तो तारीफ फनीशा की तरफ से मैं कर ही सकती हूँ. नहीं, यू आर लिस्निंग टू 104.9 FM. दिस इज गपशप गली विथ मी रमिता.

You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Gupshup Gali with me, Rimita. And I got a call from Anshul, who's driving right now. And unhone call kiya aur bataya ki bachpan mein mummy har waqt unke piche padi rehti thi, unki mummy. To khana khaya, kahan ja rahe ho, kab aoge, tab shayad wo irritation lagta hoga unko. But sadly, he misses it now aur bahut zyada miss karte hain apni mummy ko. कितनी रिलेटेबल बात है ना. तब हर सवाल का जवाब यही होता था कि मम्मी मैं बच्चा नहीं हूँ, और कभी दिन भर अभी कोई ना पूछे कि खाना खाया तो याद तो मम्मी की ही आती है. जिसे हम टोकना समझते थे उसमें कितना ख्याल छुपा था. जो आज़ादी तब लगती थी, अब कभी कभी दिल कहता है यार मम्मी आज फिर थोड़ा मेरे पीछे पड़ जाओ ना. इसीलिए जो टाइम है, जब है, तभी इंजॉय अगर हम करें या उसकी वैल्यू को तब समझे, तभी रहता है ना कि वी फील इट, वी वांट टू फील इट, एंड वी वांट टू फील द थिंग्स दैट वी गो थ्रू एट द मोमेंट व्हेन वी हैव इट. सो इसीलिए जिसकी वैल्यू जब हो तब करो, तभी ना हो

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
7: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
8: अजी सुनते हो?
9: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
7: द ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस एवरी फ्राइडे 9:45 AM Only on Funasia Radio.
10: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, but sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com.
11: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
11: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
11: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
12: Dude, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
11: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
13: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
14: सेलिंग अ होम, आई ब्रिंग मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनल कमिटमेंट टू योर जर्नी, बिकॉज टू मी रियल एस्टेट इजंट जस्ट अबाउट प्रॉपर्टीज, इट्स अबाउट यू मेरे दोस्तों, योर पॉसिबिलिटीज एंड योर न्यू बिगिनिंग्स। Every home has a story. Let's create yours together.
13: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
15: Phone uthaye, number dabaye. 347-449-4242.
16: Zindagi ek safar hai suhana. यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़र Suite 205, Frisco.
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

आई जस्ट गूगल द वर्ड वखरा और मतलब क्या है इसका ये जानने के लिए मैंने वही गूगल किया था, तो मुझे रिजल्ट में ये मिला कि डिफरेंट डिस्टिंक्ट यूनिक यही है होता है वखरे का मतलब, वखरा वखरा स्वैग, अलग स्वैग, डिफरेंट स्वैग। और तब दिमाग में आया यार ये अगर चाहिए तो डैलस में तो एक ही जगह मिलेगा। यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशिया रेडियो एंड दिस इज गपशप गली विद मी रमिता एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वखरा स्वैग विच यू कैन गेट ओनली एट PMJ ज्वेलर्स जो कि इज नाउ ओपन ऑन द मेन स्ट्रीट इन Frisco. They have a legacy of 60 years of jewelry excellence and timeless Indian craftsmanship. Chahe stunning gold ho, diamonds ho, bridal collection ho, or for everyday jewelry, they have the Sweet 16 collection as well. So go ahead and celebrate any occasion or milestone in your life with PMJ Jewels. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghattabaneni, PMJ is a name which is trusted by generation. So agar again if you want that vakra swag in your life and one that you know to glisten and brightfully present yourself, gracefully present yourself with stunning jewelries, PMJ Jewels is the go-to location right now in Dallas.

It's 12:14 by the studio clock. You're listening to 104.9 FM, Fanisha Radio, और गपशप गली with me, Rimita is live right now. और गपशप गली में अब एक confession. You know, बचपन में जिन चीजों से बचने के लिए हम excuse बनाते थे, बड़े होकर उन्हीं के लिए हम time निकाल रहे हैं यार. And I'm talking, definitely talking about sleep. जल्दी सो जाओ, आज घर पर रहो, पहले घर का खाना खाओ. तब लगता था यार मम्मी पापा मिलकर हमारी एंजॉयमेंट बैन कर रहे. लेकिन अब अगर कोई बोले कहीं कहीं कहीं जाना नहीं है, सिर्फ घर पे आराम करो, तो वही लग्जरी है. बचपन में ऐसी कौन सी चीज जो आपको पनिशमेंट लगती थी आज है लग्जरी, उसी बारे में चर्चा हो रही है. एंड अगर मैं नींद की बात कहूं तो मेरे जीवन में अगर आई हैव टू एनलिस्ट एवरीथिंग, ऑल द लग्जरीज, तो मेरे जीवन में नींद इज द अल्टीमेट लग्जरी राइट नाउ. बचपन में हमारी बेड टाइम फ्रीडम छीन हमारी बेड टाइम हमारी फ्रीडम छीन लेती थी. बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से थोड़ी फ्रीडम मिल जाए हमें ना, तब हमें बेड टाइम चाहिए. मुझे ये जानना है आपसे कि कितने बजे आप सो सकते हो अगर एक रात कोई काम, कोई नोटिफिकेशन और ना ही किसी अलार्म का टेंशन हो. कॉल मी एट 972-235-5555 एंड आई विल टेल यू माई स्टोरी एज वेल.

You're listening to 104.9 FM Funny Shar Radio. This is Gup Shup Gali with me, Ramita. जहाँ पे Gup Shup is about the luxuries now, जो बचपन में थी punishment. बाहर का नहीं मिलेगा, घर का खाना खाओ. बचपन में ये सुनते ही लगता था यार, हमारी cravings को house arrest मिल गई है. अब थक कर अगर घर आओ और कोई गरम गरम दाल चावल रख दे तो वही punishment होती है लग्जरी. लेकिन एक चीज नहीं बदली है, आज कुछ चटपटा खाने का मन है. ये थॉट अभी भी सेम है, बस तब परमिशन लेने की जरूरत थी. अब हमें सिर्फ जगह डिसाइड करनी है. तो आज क्रेविंग्स का एड्रेस है द वन एंड ओनली पेज 3 ईटरी एट हब 121. सिजलिंग कबाब्स, फ्लेवरफुल चाट, फ्यूजन बाइट्स और रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स, बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड के साथ. I mean, look at the range they have, range of food, diverse food they have. Bro, Mumbai ka chaat street food, jo chatpata hum jab hi khane ki koshish kar, khane ke baare mein sochte, wo bhi milega. And if you want that Awadhi Lucknowi biryani, then wo bhi milegi. And that is that Indian food with a modern flair. That is page 3, Eatery Hub. At Eatery at Hub 121. तो चाहे लंच हो, डेट नाइट हो या दोस्तों के साथ फूडी मीटअप, घर के कंफर्ट से थोड़ा बाहर निकलकर अगर चटपटा खाना हो, then that is page 3. Visit page3eatery.com for more details.

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: अगर किसी चीज को दिल से चाहो
2: तो पहले चेक कर लो उस पे डील है या नहीं.
3: डील कहाँ?
2: सिंपल, पास्या पे. इंट्रोड्यूसिंग पास्या. डिस्कवर एक्साइटिंग डील्स एंड ऑफर्स एट रेस्टोरेंट्स नियर यू राइट नाउ. ओपन पास्या, सी व्हाट्स अराउंड यू, फाइंड अ डील एंड ग्रैब इट बिफोर इट्स गॉन.
4: डाउनलोड पास्या, दैट्स PASYA टुडे. बिकॉज़ डील्स दूर नहीं, पास है.
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ.
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ.
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ.
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
7: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
9: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Family ko chahiye North Indian, friends ko South Indian. Ab jaye to jaye kahan?
10: Simple, Basera Grand. One destination, double the flavor.
11: Matlab crispy golden dosa?
10: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis. और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
11: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
2: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
4: हैव यू थॉट अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ यू और अ बिजनेस पार्टनर पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
12: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.

37 minutes past 12 o'clock. You're listening to 104.9 FM Phanisha Radio. This is Gupshup Gully with me, Ramita, जहां पे मैं हूं अपने शो के आखिरी सेगमेंट में. तो सोचा क्यों ना जाते जाते आपके लिए थोड़े पिज्जाज खाने के मौके दे जाओ. इट्स टाइम फॉर दैट गिव अवे ऑफ फन पिज्जा किचन, जहां पे आप जीत सकते हैं $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन फ्रिस्को. तो डेफिनेटली इफ यू विन दिस, डेफिनेटली ट्राई आउट द मेक्सिकन फ्लेवर्ड पिज्जाज विच दे हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड. और खाने के बाद मुझे जरूर कॉल करके बताइएगा मेरे शो में कि आपको पिज्जाज कैसे लगे. बट बिफोर दैट लेट्स प्ले दिस क्विज, जहां पे आई विल बी एक्सप्लेनिंग अ बैडली badly explained plot of a movie, और आपको सिर्फ उसको guess करना है और जीतना है ये coupon. The clue is right now here. एक बहुत ही wealthy businessman जिसको 15 मिनट का amnesia होता है, और इसी कारण वो हर एक important information अपने body में टैटू कर लेता है, और सारे जो गुंडे उसको मिलते हैं उन्हें heavy metal pipe से पीटता भी है, लेकिन इतना बिजी है इस पीटने के चक्कर में कि वो बेचारा अपना खाना भी खाना भूल जाता है, बिकॉज ही इज अगेन इज टू बिजी टू सीक द रिवेंज ऑफ हिज द डेथ ऑफ हिज गर्लफ्रेंड. तो कॉल करके मुझे बताओ कौन सी ये मूवी है विच आई हैव जस्ट रुइंड द प्लॉट, रुइंड द स्टोरी लाइन फॉर यू, बट आपको करेक्टली गेस करना है. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. भूलो मत, मूवी का नाम पता तो है, जस्ट कॉल करने की देरी है.

I have been watching my dial. I mean, almost 3 minutes में 8 calls. अब ये मुझे पता नहीं आपका ये जो प्यार है वो मेरे लिए है या पिज्जा के लिए है या बॉलीवुड के लिए है. यार I have got the winner's name, so please मुझे और कॉल मत कीजिए. The name is आनंद चंद्रशेखर. जी नहीं, ये फिल्म का नाम नहीं है, ये विनर का नाम है जिन्होंने करेक्टली आंसर किया है. द मूवी नेम इज गजनी. आई हैव रूइंड द प्लॉट फॉर यू, बट इट वॉज ऑल बिकॉज यू कुड विन दिस $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. और जिनके हकदार है अगेन आनंद चंद्रशेखर, कंग्रेचुलेशंस. यू कैन गो टू दिस फ्रिस्को लोकेशन एंड अवेल योर गिफ्ट कार्ड. और बाकी लोगों के लिए निराश ना हो, हमारे फनीशा में हर घंटे ऑलमोस्ट कोई ना कोई गिफ्ट अवे होता ही है. तो यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ऑल यू हैव टू डू इज टू कीप लिसनिंग टू फनीशा रेडियो. दिस इज गपशप गली विद मी रमिता.

माशुका के साथ तो मूड आपका सेलिब्रेशन वाला ही होगा। वैसे बॉलीवुड में सेलिब्रेशन गाने से शुरू होता है, गाने से खत्म, मगर इन रियल लाइफ हमारे यहाँ पे सवालों पे सवाल। वेन्यू कहाँ होगा, डेकोर कौन करेगा, खाना किसका होगा? तो अगर आपके घर में कोई भी ओकेशन हो, वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशन जो आप प्लान कर रहे हैं आपके घर, वेनेसा इवेंट्स विल ब्रिंग इट everything together for you. Chahe wo venues ho, decor ho, and that decor would be by the signature events, photography ho, hospitality ho, or catering exclusively by the Basera Grand. तो आप सिर्फ ये काम कीजिए, अपना गेस्ट लिस्ट और अपने डांस मूव्स पर ध्यान दीजिए, बाकी हरी बसेरा संभाल लेंगे। कॉल हरी बसेरा एट 469-442-8770, दैट्स 469-442-8770, एंड दैट इज वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

12:53 PM by the studio clock. You're listening to Funny Share Radio 104.9 FM. This is Gup Shup Gali with me, Rumita. और ये जो टाइम मैंने बताया, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आपके साथ मेरा टाइम खत्म होने वाला है. मैं मिलूंगी फिर कल 10 बजे, सेम टाइम, आई मीन द टाइम दैट आई स्टार्टेड टुडे, और सेम प्लेस, यानी कि आपका डैलस का डैलस, आपकी डैलस की धड़कन, दैट इज 104.9 FM फन एशिया रेडियो डैलस. आज फिल्मी रोमांस का रियलिटी चेक भी हुआ, बचपन की पनिशमेंट जो लग्जरी का स्टेटस अभी हमको देती है उसके बारे में भी डिस्कस किया. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स एंड ऑल योर स्टोरीज. यही तो है गपशप गली का असली फ्लेवर. दिस इज रमिता साइनिंग ऑफ फ्रॉम गपशप गली टुडे. तब तक खुश रहिए, और आज अगर कोई बोले आराम कर लो तो उसका मौका मत छोड़िएगा. जाते जाते अब ब्रांड न्यू ट्रैक. वैसे गाना इज अ लेजेंडरी सॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू रिवील मच, बट इट हैज बीन प्रेजेंटेड वेरी ब्यूटिफुली इन दिस मूवी मिर्जापुर. तो हर उन let's not reveal everything. Let's enjoy the music and just enjoy the music.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
6: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
12: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
11: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
12: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
13: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
4: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
13: Barista House, richness of biryani bliss.
14: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
15: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
14: नहीं।
15: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
14: नहीं।
15: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
14: वो भी नहीं।
15: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
16: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
4: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
17: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: Sathiya.
19: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
20: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
21: तुमसे मिलके दिल का है।
20: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
22: इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

You tuned into 104.9 FM Financial Radio. Thank you so much for connecting with us this afternoon. मैं हूँ किरण आपके साथ. वैसे तो आप मुझे सुनते हैं 2:30 PM till 5 PM. I'm here with you every day, Monday through Friday, with the afternoon drive time with सुनहरी किरण. लेकिन आज मुझे सुनहरी किरण को मिला है सुनहरा मौका. I have 1.5 more hour with you. 1 बजे से लेके 5 बजे तक मैं रहूंगी आपके साथ और आप भी मेरे साथ हैं 972-235-5555 के थ्रू. अच्छा जी, जब इस तरह के मुझे सुनहरे मौके मिलते हैं तो फिर मैं उनको अवेल करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए लेके आती हूँ. जैसे हम कभी कवाली स्पेशल्स लेके आते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा रोमांटिक मेलोडीज प्ले करते हैं. आज ये जो आधा पौना घंटा है ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ फिल्मी गजलें और नज़में. वो गाने जो कि यूजुअली प्ले नहीं किए जाते, कि थोड़ा स्लो पेस्ड होते हैं, लेकिन ये टाइम इतना ज़बरदस्त है आफ्टरनून का. आप अपने लंच के लिए जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा कैलूले का सोच रहे हैं, मतलब कैलूले का मतलब होता है आफ्टरनून नैप. अगर आपको सोच रहे हैं कि लेना है तो पहले ज़रा प्यारी प्यारी सी गज़लें सुन लीजिए, या फिर कोई भी आपको ज़रा सुकून का पल चाहिए तो ये वो गीत हैं, या आप कह लीजिए वो गज़लें और नज़में हैं जिनसे मिलता है दिल को सुकून. कुछ शायरी के ऊपर गौर कीजिए, कुछ म्यूजिक का मजा लीजिए. ये नेक्स्ट 40 मिनट्स और सो विल बी डेडिकेटेड टू फिल्मी गजलें. सिर्फ फिल्मी गजलें प्ले कर रही हूँ जी. प्लेलिस्ट मेरे पास रेडी है. आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो आई एम ऑल ईयर्स. लेकिन अगर मैं उन्हें प्ले ना कर सकूँ ड्यू टू द थीम या ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग, तो प्लीज पहले से माजरा.

जी हाँ, ये गजल स्पेशल लेकर आई हूँ आपके लिए ऑन सुनहरी किरण. अराउंड 40 to 50 मिनट्स यही गजल स्पेशल चलेगा. आपकी रिकमेंडेशन जरूर ले रही हूँ, और अगर वो हमारी थीम के साथ मैच की, फिल्मी गजल्स प्ले हो रही हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉन फिल्मी गजल्स इस वक्त नहीं प्ले कर रहे, ताकि कुछ फिल्म का सीन रहे साथ, और साथ ही साथ हमें याद रहे, या कहानी, जब किसी गजल के साथ कोई कहानी बैकग्राउंड किसी फिल्म का एसोशिएट हो जाता है, कोई कहानी एसोशिएट हो जाती है, इमोशंस एसोशिएट हो जाते हैं, हीरो हीरोइन की या तो लड़ाई या मोहब्बत या जुदाई कुछ एसोशिएट हो जाती है, तो उस गजल का जो मीनिंग है वो हो जाता है दुबाला. तो अब जो मैं अगली गजल आपके लिए प्ले करने लगी हूं, दैट इज रिक्वेस्टेड बाय विशाल. ही इज डेडिकेटिंग दिस टू मनाली. सो मनाली, हियर इट इज फॉर यू. इट इज अ ब्यूटिफुल गजल टेकन फ्रॉम द मूवी साजन.

एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में सुन रहे थे आप साजन फिल्म का ये खूबसूरत गजल सॉन्ग. और आगे बढ़ते हुए अनदर ब्यूटीफुल नंबर, ऑल टाइम फेवरेट नंबर्स जो गजल्स में शुमार होता है बॉलीवुड की, वो आपके लिए प्ले कर रही हूँ जगजीत सिंह जी की आवाज में. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, माई टाइम इक्विटी ऑफर करता है जी आपको पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ रिटायरमेंट प्लानिंग. सो कोई भी आपका इनमें से पर्पज हो, नीड हो, तो आप माई टाइम इक्विटी को कॉल कीजिए. दे विल हेल्प यू. दैट नंबर इज 469-702-1272 इज दैट नंबर. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज mytimeequity.com. सो लेट्स मूव ऑन टू द मूवी अर्थ, जिसमें हमें नजर आई थी शबाना आजमी, राज किरण एंड दिस ब्यूटिफुल नंबर इन द वॉइस ऑफ जगजीत सिंह.

जी हाँ, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो? बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन हम अक्सर अपने पुराने जख्मों को छेड़ते ही रहते हैं जी। शायद इसी में मजा आता है हमें। बहरहाल, इस गजल टाइम में कुछ ऐसे गजल्स और नज़में आपको सुनाऊंगी जो कि दिल के तारों को छेड़ देंगे। कुछ ऐसे, अगर आप शायरी से लगाव रखते हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स, अच्छे अल्फाज आपको महसूस करते हैं, मजा आता है आपको सुन के, तो दिस आफ्टरनून, दिस नेक्स्ट अनदर 30-35 मोर मिनट्स वी हैव ऑफ दीज ब्यूटिफुल नंबर्स। अच्छा, तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि जी लंच का टाइम हो रहा है, भूख जब लगती है तो फिर खाने पीने की बातें करना बड़ा मजा आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भूख के दौरान जब हम रीलें देख रहे होते हैं तो खाने पीने की रीलें कितना मजा आता है देख के, और ऐसा लगता है जैसे भूख चमक गई है। तो इसी तरह खाने पीने की बात कर रही हूँ। अगर आपका घर जैसा खाना खाने का दिल तो हमेशा ही सभी का करता है, लेकिन पकाने का दिल नहीं करता, कौन पकाए डेली डेली खाना? कोई मेहमान आ रहे हैं तभी एकदम से खाना नहीं पकता, तो घर जैसा खाना मिलेगा आपको तंदूरी फ्लेम। गार्लैंड में लोकेटेड है, तमाम आपके नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जैसे कि होम्स रिच करीज हुई, तंदूरी प्लाटर्स हुए, कबाब्स हुए, नान्स हुए, हर चीज आपको मिलेगी यहाँ पे विद एब्सोल्युटली होम स्टाइल पंच। तो आप जरूर ट्राई कीजिए। दिस इज तंदूरी फ्लेम लोकेटेड इन गार्लैंड। अच्छा जी, अब जो मैं आपके लिए गाना लगाने लगी हूँ, दिस इज अ टाइमलेस पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ हार्ट ब्रेक एंड लॉन्गिंग, और ये 13th सेंचुरी सूफी गजल लिखा करते थे, और वो एक बहुत बड़े राइटर थे, 13th सेंचुरी के सूफी थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। इन्होंने इसको लिखा था, और उसके बाद जो है दो, मतलब बहुत ज़्यादा बॉलीवुड में ये बहुत मशहूर हुई, और फिर ये गाना बना, और जो ये 13th सेंचुरी मास्टरपीस था, द ओपनिंग लाइन्स वर रिटन ओवर 700 ईयर्स अगो बाय द लेजेंडरी सूफी पोएट म्यूजिशियन एंड स्कॉलर अमीर खुसरो। और जी, खुसरो साहब ने इसे लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में और ब्रज भाषा में, जिसे आप अर्ली हिंदुस्तानी भाषा भी कह सकते हैं, टू शो केस अ यूनिक मल्टीलिंगुअल डायलॉग ऑफ लव। और उसके बाद 1985 में इसे जो है द फ्रेज वॉज रिवाइव्ड बाय मॉडर्न ऑडियंसेज, या फॉर मॉडर्न ऑडियंसेज, 1985 मूवी थी गुलामी, जिसे डायरेक्ट किया था जे पी दत्ता ने। लिरिसिस्ट थे गुलजार साहब, उन्होंने खुसरो साहब की ये लाइनें उठाई, जिहाल मस्की मुफम बरंजिश बहार हिजरा हमारा दिल है, और उससे बनाया एक गाना। सो उसी मेर खुसरो साहब को ट्रिब्यूट देते हुए दिस वन।

एंड इफ़ यू आर ऑन H1B, F1 या फिर L1 वीज़ा पे हैं आप, या कोई भी और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है आपका और आप प्लान कर रहे हैं योर पैथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, तो फिर द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता इज़ द राइट प्लेस टू गो. अटर्नी सीमा मेहता और उनकी एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज करती है जी एक्सक्लूसिवली इमिग्रेशन लॉ में, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, स्पर्म लेबर सर्टिफिकेशन और साथ साथ US सिटीजनशिप. तो यू नीड एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, एनी इमिग्रेशन प्रोग्राम, please send them an email. That email ID is info@seemamehtalawfirm.com. That is SEEMAMEHTA lawfirm.com. Once again, info@seemamehtalawfirm.com. So this is the law offices of Seema Mehta right here to guide you.

0: डैड प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
1: लैपटॉप में.
0: इन्वेस्टमेंट?
1: गूगल ड्राइव.
0: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
1: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
0: डैड वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
3: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
4: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
5: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
6: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर?
7: उमर ख्वाजा.
8: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
9: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
10: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
9: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
10: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
11: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
16: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन.
17: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे. फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट. सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM. दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग.
18: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration. From top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flashbrush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.
19: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

बहुत ही खूबसूरत जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप, तेरी खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। और अब जी बस अराउंड 3-4 गज़लें और रह गई हैं मेरे पास। 2 बजे इस सेगमेंट को हम कर देंगे रैप एंड देन वी विल स्टार्ट सम रोमांटिक मेलोडी। वैसे तो ये सब रोमांटिक ही चल रहा है, बट देन दी फिल्मी रोमांटिक मेलोडीज़ के साथ स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट को। आगे बढ़ते हुए आपको बता रही हूँ कि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए एक ज़बरदस्त ऑफर लेके आए हैं। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है या फिर आपका जो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर है वो आपके नेटवर्क में नहीं आता, तो कोई मसले की बात नहीं है, बिकॉज अब वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ। और इस मेंबरशिप को अगर आप ले लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? इट इंक्लूड्स प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप्स एंड प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, साथ ही साथ टेली हेल्थ भी अवेलेबल होगी इफ इट इज रिक्वायर्ड, केयर कोऑर्डिनेशन प्लस 20% सेविंग ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो ये बात आपके लिए जाननी जरूरी है कि दिस इज नॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, सम एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई। सो टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस प्रोग्राम एंड हाउ दिस कैन बी योर नेक्स्ट स्टॉप, गिव देम अ कॉल और या फिर आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं एंड दे विल गेट बैक टू यू। 214-666-6259, 214-666-6259 इज द नंबर, या फिर विजिट कीजिए passionhealthphysicians.com। मरियम एंड सोहेल आप हमारे बहुत प्यारे लिसनर हैं, आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी ये गजल प्ले कर रही हूँ, नाम फिल्म से ली गई, पंकज उदास साहब की आवाज में। गजल कम नज़म है ये, दिस इज चिट्ठी आई है। कौन ऐसा शख्स है जिसने इस चिट्ठी का इंतजार नहीं किया? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स आउट देयर इन बॉलीवुड।

फिल्म थी नाम 1986, पंकज उदास साहब की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक, आनंद बख्शी के लिरिक्स महेश भट्ट ने किया था इस फिल्म को डायरेक्ट, और साथ ही साथ जो स्टोरी लिखी थी वो लिखी थी सलीम खान साहब ने। और इस गाने के पीछे जो आइडिया था बहुत सिंपल था। द स्टोरी, आप नाम फिल्म अगर आपने देखी हो तो स्टोरी रिवॉल्व करती है ऐसे लोगों के इर्द गिर्द जो मेरे आपकी तरह अपने मुल्क को छोड़कर बाहर आते हैं जिंदगी बनाने, करियर बनाने, अच्छी लाइफ बनाने। और फिर पीछे बैक होम उस जमाने में क्या होता था, अब तो खैर चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, बट बैक इन दोज डेज इन 1980s व्हेन पीपल यूज टू लीव, तो कोई व्हाट्सएप तो होता नहीं था कि रोज़ फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप से वीडियो कॉल मिला ली एंड देन लाइफ इज़ सो गुड कि सब कनेक्शन में है। तब तो आपको कॉलें मिलवानी पड़ती थी, वो क्या कहते थे, ट्रंक कॉल्स मिलानी पड़ती थी और फिर वेट करना पड़ता था, और कभी कहीं जाके किसी और लोहार घर में फ़ोन भी नहीं होता था तो कभी किसी के घर जाके कॉल रिसीव करनी पड़ती थी जिन लोगों के घरों में फोन नहीं होता था। तो दिस सॉन्ग एक्चुअली हिट द ऑडियंस सो डीपली। और पंकज उदास साहब इस गाने के साथ कैसे इन्वॉल्व हुए, सलीम खान की वजह से, क्योंकि सलीम खान ने जब ये फिल्म लिख रहे थे तो उन्होंने महेश भट्ट को, जब महेश भट्ट साहब ने उनको इस गाने का बताया तो महेश भट्ट को उन्होंने आइडिया दिया कि आप पंकज उदास को इसमें लाइए, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा बनाइए इस गाने को प्रेजेंट करने का कि एक सिंगर है, एक गजल सिंगर है जो ये गाना गा रहे हैं और उससे जो है ऑडियंस बैठी सुन रही है और किस तरह से वो हिट करेगी ऑडियंस को, वही हमें परसेप्शन देना है। एंड दैट इज व्हेन पंकज उदास वाज आस्क्ड टू स्टेप इन, ऑल्दो ही डिडंट यूज टू स्टेप इन टू द फिल्म्स, लेकिन उनको कन्विंस किया गया। जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उस रिकॉर्डिंग रूम में या हॉल में सब लोग मौजूद थे, उनकी फैमिली के मेम्बर्स भी, डायरेक्टर्स के मेम्बर्स भी, प्रोड्यूसर्स के मेम्बर्स भी, और फिर जब गाना गा के पंकज साहब बाहर आए तो देयर वाज अ साइलेंस इन स्टूडियो। तो पंकज साहब को ये लगा कि यार मतलब मुझे लगता है कि मैंने ये गाना अच्छा नहीं गाया, कि मतलब व्हाई इज एवरीबॉडी सो साइलेंट। तो पंकज साहब को कहा गया कि आप सुनिए आपने क्या गाया है, और जब पंकज साहब ने उस गाने को सुना तो उनको एहसास हुआ कि एवरीबॉडी अराउंड हिम इज, जब वो कहते हैं ना कि आप बीदा आंखें, यानी कि आंखों में अश्क थे सबके, आंसू थे, बिकॉज दैट इज हाउ द सॉन्ग हिट, एंड नॉट ओनली हिट द पीपल इन द स्टूडियो बट टू मी एंड यू हु आर, और स्पेशली हम लोगों को हु आर सो फार अवे फ्रॉम होम। बट बैक इन दोज डेज 80s में, जब आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि 80s

का ये माहौल हो और आपके प्यारे आपसे दूर गए हुए हों और ये गाना चल रहा हो तो याद तो आनी ही है. अच्छा जी, इसी के साथ ये हो गई ये कहानी. अब मैं आपको एक प्यारा सा रोमांटिक सी गजल सुनाने वाली हूँ फ्रॉम द मूवी. दिस इज सरफरोश मूवी से ली गई ये गजल. लेकिन गजल प्ले करते हुए आपको बताऊँ कि अगर आप टेक्सस में बिजनेस ओनर हैं तो आपको डेफिनेटली कमर्शियल स्मार्ट कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस तो चाहिए ही चाहिए. तो कहाँ जाना है आपने? तारा कमर्शियल एनर्जी पे. टेक्सस बिजनेसेस को 2002 से सर्व कर रहे हैं. कंपैरेटिव रेट्स, रिलायबल सर्विसेज एंड कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान. सो ऑल इन ऑल दिस इज योर बेस्ट ऑप्शन. गिव देम अ कॉल 844-428-2808 844-428-2808 उनका नंबर, या फिर tara energy.com is where you need to log on.

ये गज़ल सेगमेंट बस इख्तिताम पे पहुंचने वाला है. और वैसे मतलब हम सभी को मालूम है, हम सभी किसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैपेसिटी में गज़ल सुनते आए हैं. लेकिन अगर आपको सही डिफाइन करा जाए कि गज़ल क्या होती है, तो गज़ल एक फॉर्म ऑफ उर्दू पोइट्री होती है जिसमें ट्रेडिशनली एक्सप्लोर किया जाता है प्यार मोहब्बत को, लॉन्गिंग को, सेपरेशन को, हार्ट ब्रेक को. ब्यूटी गज़ल का बहुत बड़ा हिस्सा है और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ को. इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि गज़ल जो है वो एक पोएटिक एक्सप्रेशन है, एक पोएट्री ऑफ इमोशंस है, जहाँ पे जो अशार होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं थॉट्स और फीलिंग्स. और कई बार आपको वो जो शेर हैं वो अलग अलग भी एक दूसरे से नज़र आते हैं, जैसे एक जो पिछला शेर होता है वो अगले शेर से कनेक्ट नहीं कर रहा होता. लेकिन इसीलिए कई गज़लों के सिर्फ चंद एक शेर बड़े मशहूर हो जाते हैं बनिस्बत होल गज़ल. सो दैट वॉज जस्ट क्रक्स ऑफ व्हाट अ गज़ल इज़. और अब एक बहुत ही प्यारी गज़ल हरिहरन साहब की आवाज़ में आपके लिए सुनाने लगी हूँ. दिस इज अ ब्यूटिफुल नंबर. एंजॉय.

और इसी के साथ इस आखिरी गजल के साथ हम कर रहे हैं अपने सेगमेंट का इख्तिताम. 2 बजे से ऑनवर्ड्स लेके आऊंगी आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल रोमांटिक मेलोडीज टू लाइटन अप द मूड अ लिटिल बिट. इस गजल के साथ इख्तिताम हो रहा है जगजीत सिंह की आवाज और बहुत ही प्यारी गजल टेकन फ्रॉम द मूवी प्रेम गीत. दिस इज होठों से छूलो तुम मेरा गीत अमर कर लो. डोंट टेल मी आपने ये नहीं सुनी, ऐसा हो ही नहीं सकता.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
3: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
4: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
5: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
6: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस.
7: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
7: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
6: ये क्या होता?
7: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
8: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
9: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
10: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
11: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
12: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
13: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
14: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
15: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
16: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
18: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पासिया एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पासिया, बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.
19: हाय, दिस अक्षय कुमार एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो.
20: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM.

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with us this afternoon. मैं हूँ किरण, आपके साथ सुनहरी किरण लेकर हाजिर हुई हूँ. आज आपके साथ डेढ़ घंटा एक्स्ट्रा मिला है मुझे. वो कहते हैं ना, सुनहरी किरण पे मिला है मुझे सुनहरी मौका. वो मौका हमने पूरा अवेल किया. एक घंटे का हमने कुछ गजल स्पेशल किया, फिल्मी गजल स्पेशल्स. और थैंक यू सो मच आपकी फोन कॉल्स का, द वे यू एंजॉयड, द वे यू रिकमेंडेड द गजल्स. कुछ मैं प्ले कर पाई और कुछ चूंकि वो नॉन फिल्मी थी या कुछ उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी तो मैं नहीं प्ले कर पाई. But anyways, the what matters most is the participation is and your phone calls. And ab hum enter kar rahe hain apne romantic melodies ke segment mein. I have some beautiful romantic melodies lined up for you. Once again, main hu Kiran, aap mujhe sunte hain 2:30 p.m. till 5 p.m. every day, Monday through Friday. But aaj hoon aapke saath extra maujood. Aur aaj Tuesday hai. Aapko yaad hai na, aaj afternoon drive time with Sunehri Kiran mein aapke liye lekar aaungi Bollywood Spotlight. So, aapne kya karna hai? बने रहना है हमारे साथ.

क्या आप तैयार हैं एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए? क्यों होगी ये अनफॉरगेटेबल? क्योंकि एक ऐसा शख्स आ रहा है जिनके गाने अनफॉरगेटेबल हैं, जिनकी यादें हमारी जिंदगी में अनफॉरगेटेबल हैं, दैट इज सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट आ रहे हैं, एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं ऑन सैटरडे सितंबर द 26th, अराउंड 11 दिन बाद है ये कॉन्सर्ट जी, 8:30 PM एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। आपके पसंदीदा गाने, आपकी पसंदीदा आवाज में सब कुछ होगा, लाइव आपके सामने परफॉर्म करेंगे सोनू निगम जी, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए इस ऑप्शन को या इस इवेंट को जो आपके लिए आ रहा है। टिकट्स मास्टर पे अवेलेबल हैं इसके टिकट्स, सो प्लीज लॉग ऑन टू ticketmaster.com एंड गेट योर टिकट्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो गिव अ कॉल एट दिस नंबर 855-360-SHOWS. Once again, the number is 855-360-SHOWS. This is Revolution, Sonu Nigam Live, exclusive media partner, Fun Asia Network.

कभी खुशी कभी गम से लिया गया ये गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में। और सोनू और अलका की जोड़ी जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई। कुछ बेहतरीन गाने सोनू और अलका याग्निक ने साथ गाए, जैसे कि सोनू निगम ने श्रेया घोषाल के साथ कुछ बेहतरीन खूबसूरत गाने दिए। वैसे तो सोनू निगम की आवाज जिसके साथ भी मिल जाए वही हो जाता है कमाल। सो जरूर मिस बिल्कुल मत कीजिएगा इस कॉन्सर्ट को जो 26 सितंबर को आपके लिए आ रहा है। ticketmaster.com इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन एंड बाय योर टिकट्स। वी आर ट्यून्ड इनटू रोमांटिक मेलोडीज फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। 2:30 बजे से ऑनवर्ड्स लेकर आऊंगी आपके लिए बॉलीवुड स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट डालेंगे कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज पे जो अपने जिन्होंने अपने काम से दिया हमें कुछ बेहतरीन म्यूजिक इन बॉलीवुड।

और अजी, बस इस आखिरी गाने के साथ हम कर रहे हैं रोमांटिक मेलोडीज को बाय बाय. और आफ्टर वी कम बैक वी आर गोइंग टू स्टेप इनटू व्हाट द बॉलीवुड स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट आज एक नहीं दो सितारों पे डालेंगे. पहले एक की बात करेंगे, कुछ आपको आधा पौना घंटा उनके गाने सुनाऊंगी और उसके बाद हम दूसरे सितारे पे जाएंगे. सो बहुत कुछ अभी आपके लिए लाइंड अप है, बहुत सारे गिव अवेज लाइंड अप हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाइंड अप है. फन एजी आपको रखता है एंटरटेन्ड एज वेल एज इन्फॉर्म्ड. 24/7 हम आपके साथ रहते हैं, आप भी हमारे साथ रहते हैं 9722355555 के थ्रू. सो इस गाने के साथ हम कर रहे हैं ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक से वापस आकर बॉलीवुड स्पॉटलाइट.

0: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
1: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो.
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
5: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो.
7: लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
8: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
7: कैसे?
8: पेज 3 ईटरी?
7: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
8: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
9: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट.
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
12: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
13: हाँ.
12: घर रिलोकेट करनी है?
13: हाँ.
12: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
13: हाँ भाई हाँ.
12: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
14: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
4: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
4: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
19: तुमसे मिलके दिल का है.
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
4: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
20: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो.

सुन रहे हैं आप 104.9 FM Fun Asia Radio. This is your afternoon drive time with the सुनहरी किरण. जी हाँ, ढाई बजे से पांच बजे तक मंडे टू फ्राइडे आप मुझे सुनते हैं. हर रोज आपके लिए कुछ नया, कुछ डिफरेंट. और आज का फ्लेवर होता है बॉलीवुड स्पॉटलाइट. और आज हमने जिन पे स्पॉटलाइट डाली है एक ऐसी यंग बॉलीवुड एक्ट्रेस के नाम. आज का हमने ये पहला एक घंटा किया है जो सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि अपने रॉयल फैमिली बैकग्राउंड की वजह से सुर्खियों में रहती, शुरू में तो रहती भी थी. कॉन्फिडेंस और आउटस्पोकन पर्सनालिटी की वजह से शी वॉज इंस्टेंटली रिकग्नाइज. पीपल यूज टू यू नो टॉक अबाउट हर. और यही सफर हम बात करेंगे. आज होगी बात फ्रॉम रॉयल्टी टू बॉलीवुड स्पॉटलाइट. सारा अली खान, एक तरफ बॉलीवुड की लेजेंडरी फैमिली कनेक्शंस, एक तरफ सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी होने का जो मतलब स्टार्स की बेटी होने का वो, और दूसरी तरफ अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करती हुई ये यंग एक्ट्रेस. दिस इज सारा अली खान.

इस फिल्म से किया था उन्होंने अपना डेब्यू, और साथ थे एक ऐसे सितारे जिन्हें आज भी भूला नहीं जा सकता. जब भी इनका कोई गाना आता है, इनके बारे में कोई बात होती है, तो वो कहते हैं ना, कुछ कुछ लोगों का जिक्र, कुछ लोगों का तस्करा दिल में एक खलिश, एक खामोशी सी ले आता है. दैट्स हाउ आई फील व्हेनेवर आई रीड और टॉक अबाउट सुशांत सिंह राजपूत. 14 June 2020 द डेट दैट वी लॉस्ट हिम. अभी तक आपको यकीन नहीं आता, ही जस्ट फील्स अलाइव एंड हैप्पी वेर एवर ही इज. तो बहरहाल जी, ये गाना और ये मूवी बन गई थी स्वीट हार्ट सब लोगों की. द म्यूजिक ऑफ दिस मूवी बिकेम द स्वीट हार्ट ऑफ एवरी वन. मी टू. सो हम जो है सारा अली खान पे स्पॉटलाइट डाले हुए हैं. August 12, 1995 इनकी डेट ऑफ बर्थ. ना सिर्फ सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी होने का इनको क्रेडिट जाता है, या आप कह लीजिए रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं. शर्मिला टैगोर जैसी एक्ट्रेस की पोती हैं. मतलब लिनिएज, एक्टिंग लिनिएज आप चेक कीजिए कि कहाँ का, मतलब सारा खानदान जो है बेहतरीन स्टार्स से भरा हुआ है. सो शी ऑफकोर्स कम्स फ्रॉम अ प्रोमिनेंट बॉलीवुड फैमिली, लेकिन डिस्पाइट हर बैकग्राउंड शी has spoken a lot कि वो अपनी जो identity हैं वो खुद बनाना चाहती हैं, establish करना चाहती हैं. But she is known for her confidence, humor, spontaneous personality and also known for her writing, travel, fitness. और साथ ही साथ वो एक social media personality भी हैं, और everybody kind of likes her, her bubbly personality and the happiness that she oozes around wherever she goes. तो आज की story सारा अली खान की, और ये story शुरू होने से पहले उनकी एक academic journey भी थी. Well, who was she before she became an actress? वो बातें करेंगे सारे, लेकिन इस गाने के उस पार. अभी मैं आपके लिए लाई हूं फन पिज्जा किचन की तरफ से एक गिव अवे. फन पिज्जा किचन ने एक नई पिज्जा लाइनअप लाइन इंट्रोड्यूस की है जी, मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा. चाहे आप वेजिटेरियन लवर हैं, सी फूड लवर हैं, चिकन लवर हैं, हर तरह का पिज्जा आपको मैक्सिकन इंस्पायर्ड स्टाइल में मिलेगा. दैट इज न्यू, दैट इज फन पिज्जा किचन ऑफरिंग यू. फन पिज्जा किचन डॉट कॉम इज वेयर यू नीड टू लॉग ऑन टू चेक आउट मोर अबाउट देयर मेन्यू. और अब आपके पास चांस है ये $10 का गिफ्ट कार्ड जीतने का. अगर आप जीत गए तो आपको जाना पड़ेगा फन पिज्जा किचन की फ्रिस्को लोकेशन पे टू पिक अप दैट गिफ्ट कार्ड. सो प्लीज ये ध्यान में रखिएगा दैट यू विल हैव टू गो टू फ्रिस्को लोकेशन. और चूंकि सारा अली खान की बात हो रही है, तो आप मुझे कॉल करके बताइए कि आपको सारा अली खान की कौन सी फिल्म का रोल सबसे ज्यादा अच्छा लगा. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

फन पिज्जा किचन की तरफ से ये $10 का गिफ्ट कार्ड आपके लिए आया है। फ्रिस्को लोकेशन पे आपने जाना है इसे पिकअप करने। सवाल पूछा था आपसे कि बताइए कि आपको सारा अली खान की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी और उनका किरदार उसमें सबसे अच्छा लगा। सो दो फिल्मों का कॉन्स्टेंट जिक्र आया, कोई 5-6 कॉल्स हमने जो रिसीव की उसमें दो फिल्में बार बार तस्करे में आई, एक केदारनाथ और एक अतरंगी रे। ये दो ही मेरे नज़दीक जो है, आप बिल्कुल सही हैं, एब्सोल्युटली राइट, कि ये दो किरदार ही ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे उन्होंने प्ले किए, मीनिंगफुल रोल्स थे जो केदारनाथ में उन्होंने प्ले किया, और अतरंगी रे में तो बिल्कुल ही एक मतलब शी वॉज नॉट राइट, शी वॉज नॉट वेल, शी हैड दोज हेलुसिनेशंस या जो कुछ भी उनको होता था, और बड़ा अच्छा उन्होंने उस रोल को अदा किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स एंड फॉर पार्टिसिपेशन। और हमारी जो आज की लकी कॉलर हैं, लकी विनर हैं, वो हैं कॉलर नंबर 4, इनका नाम है निकी। एक सेकेंड, मुझे एक बार कन्फर्म कर लेने दीजिए जी कि कॉलर नंबर 4 हमारे सही नाम मैंने लिया है या नहीं। जी हाँ, निकी गौतम, निकी कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत लिया है आपने ये गिव अवे, और एक दो दिन का हमें टाइम दीजिए आपका नंबर फन पिज्जा किचन पहुंचाने के लिए। देन यू विल हैव 7 डेज टू गो टू द फ्रिस्को लोकेशन एंड पिक अप योर $10 गिफ्ट कार्ड। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जी आपका जिस सीक्वेंस में आपका कॉल आती है वो नंबर एक मैथ के फॉर्मूले में डाल के आपकी लकी आपकी विन का फैसला करती है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।

और अगर आप किसी ट्रक या फिर कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. यू हैव टू डील विद द इंश्योरेंस कंपनीज, द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन इतनी सारी हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वेल बींग एंड योर बोथ योर इमोशनल एज वेल एज फिजिकल वेल बींग. तो आप अपना ख्याल रखिए और एक अटर्नी को हायर कीजिए जो आपके लिए बाकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखे, एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी ओमर ख्वाजा. नॉट ओनली विल अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम fight your case, but they will get you the best compensation that you deserve. और जो best बात है वो ये कि आपको कुछ pay नहीं करना जब तक कि आप इस case को, अपने case को जीत नहीं जाते. So it is an absolutely win-win situation for you. You're going through anything like that, someone you know or care for is going through something like that. Omar Khwaja का number मैं आपको दे रही हूँ, आप forward कीजिए 469-300-5046 is the number, या फिर attorneyomar.com ये वो जगह है जहां आपको करना है लॉग ऑन टू फाइंड आउट मोर अबाउट द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. सारा अली खान इज वाइडली रिकग्नाइज एज वन ऑफ द मोस्ट एकेडमिकली अकम्पलिश्ड एक्टर्स इस यंगर जनरेशन में. आईवी लीग डिग्री है उनके पास हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली उन्होंने अपनी जो बेसिक स्कूलिंग है और हाई स्कूल जो है वो अपने होम टाउन मुंबई इंडिया से किया. इनिशियली शी एस्पायर टू स्टडी मेडिसिन, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने अपने एकेडेमिक्स का शिफ्ट जो है वो लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की तरफ शिफ्ट किया. शी हैज ओपनली शेयर्ड दैट हर अल्टीमेट ड्रीम वॉज टू स्टडी एट ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी. व्हेन शी फेस्ड रिजेक्शन फ्रॉम ऑक्सफर्ड, तो उनको एक मैं इंटरव्यू सुन रही थी उनका, तो उन्होंने बता रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ और मुझे लगा कि अब तो बस मुझे कहीं अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलेगा. बट इट अल्टीमेटली रीडायरेक्टेड हर टूवर्ड्स न्यूयॉर्क और फिर उन्होंने कोलंबिया में एडमिशन उनको मिला और 2013 में कोलंबिया में वो एनरोल हुई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में. और फिर यू नो हर टाइम ओवर देयर वॉज डिफाइंड एज इंटेंस एकेडेमिक रिगर. ऑफकोर्स आप जानते हैं अब कोलंबिया जाएंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी. सो एक्सेलरेटेड डिग्री की. वाइल हर अंडर ग्रेजुएट कोर्स वॉज designed to span 4 years, Sara chose to fast track her education by attending consecutive summer schools and managing heavy course loads and graduated in just 3 years. Uske baad kya hua wo sari kahani aapke saath share karenge, but ye gaane ke baad.

2013 से लेके 2016 तक वो जो तीन साल में उन्होंने डिग्री की, दे वर द, वो आप कह लीजिए इनविजिबल फॉर्मेटिव ईयर्स थे उनके लिए. मूविंग टू न्यूयॉर्क अलाउड हर टू स्टेप इंटायरली आउट ऑफ द मीडिया स्पॉटलाइट जो कि उनकी और उनकी फैमिली पे रहती थी. वो जो पब्लिक आए 24 घंटे उनको सराउंड करती थी. एंड दैट इज वेयर शी स्टार्टेड लिविंग लाइफ एंड अंडरस्टैंडिंग द अदर थिंग्स ऑफ लाइफ एज वेल. कि जिंदगी में और भी बहुत और भी दुख है जमाने में पॉपुलैरिटी के सिवा. तो ड्यूरिंग हर टाइम एट कोलंबिया शी एंजॉयड जॉइंड स्टूडेंट टू ट्यूटर ग्रुप. स्टूडेंट्स को हेल्प करती थी सैट की प्रेपरेशन करवाने में एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. तो 2016 में उन्होंने ग्रेजुएट किया और ऑल्दो ग्रेजुएशन के फौरन बाद शी डिसाइडेड टू स्टेप इनटू मूवीज. और फिर केदारनाथ की रिलीज हुई 2018 में और उसके दरमियान में एक और जर्नी से वो गुजरी और वो जर्नी थी वेट लॉस की. उसके बारे में बात करेंगे. बट यू नो अक्सर जो इंटरव्यूज देती हैं सारा अली खान उसमें ये जरूर बताती हैं. शुरू में तो मैंने काफी उनको ये बोलते हुए सुना कि यू नो शी इज इमेंसली प्राउड ऑफ हर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड शी स्टेट्स के जो मैंने जिस तरह से पढ़ाई की, जो डिसिप्लिन मुझे मिला उससे मुझे शार्प सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल थिंकिंग आया, क्लियर वॉइस मिली मुझे मेरी थॉट प्रोसेस के लिए और मैं आराम, मतलब इट्स यू नो इट गेव मी अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर माई स्पीच एंड माई थॉट्स. सो दैट इज वॉट एकेडमिक जर्नी ऑफ सारा इज ऑल अबाउट. आफ्टर वी कम बैक फ्रॉम दिस सॉन्ग एंड द ब्रेक मैं आपको बताऊंगी कि वो जो वेट लॉस जर्नी है वो कैसे हुई, कितना किलो वजन कम किया सारा ने, एंड व्हाट एन इंस्पिरेशन दिस इज.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Huzoor, aapko chunna hoga. Hum ya ye biryani?
2: Begum, mohabbat apni jagah, lekin barista ki Hyderabadi biryani apni jagah.
1: Aakhir kya hai is biryani mein?
2: Dam mein narmi, masalon mein jadoo aur har niwale mein nawabi swaad.
3: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
0: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
3: Barista House, richness of biryani bliss.
4: जिंदगी एक रंगमंच है
5: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
6: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
7: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
8: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट.
9: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव.
8: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
9: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन.
10: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
11: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
12: The Dill of Dallas. Heart to Heart. Fun Asia.
13: जुड़ जाओ अपनी धरती से. देसियों का सच्चा रेडियो चैनल. Fun Asia. 104.9 FM.

This part of our show is proudly brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firms and accounting firms in the US. Offer karte hain ji a trusted tax, accounting, payroll, bookkeeping as well as business advisory services. Chahe aap individual ho, aapka koi startup ho, established business ho, AG Fintechs is there to offer that kind of help and help you grow even further. Give them a call 469-942-9888. 469-942-9888 is that number. Ya phir agfintechs.com is where you need to log on. आज बॉलीवुड स्पॉटलाइट में हमने स्पॉटलाइट डाली है सारा अली खान पे. 3:30 बजे तक ये स्पॉटलाइट इन पे रहेगी. उसके बाद स्पॉटलाइट का फोकस चेंज हो जाएगा और एक और डायरेक्टर पे स्पॉटलाइट शिफ्ट हो जाएगी. बट फिलहाल मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले बता रही थी कि सारा अली खान की वेट लॉस जर्नी क्या हुई और फिल्मों में आने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा. शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल एंड डिस्कसिंग सम वेट लॉस थिंग्स विद मी. वो हम थोड़े देर में तस्करा करते हैं. मैं आपको बताती हूँ कि सारा अली खान ने अराउंड 45 किलोग्राम्स का वेट लॉस जर्नी का उनकी कहानी है वेट लॉस जर्नी की. अब ये जो कहानी है इसे वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस माना जाता है बॉलीवुड में. सो बिफोर मेकिंग हर फिल्मी डेब्यू she weighed 96 kilograms during her college years. Aur zahir hai unka ek aur hormonal disorder se bhi wo guzarti hain jiski wajah se unke weight loss mein aur zyada masail aate hain. Aur sath hi sath jab wo college mein thi, Columbia mein thi, to unka jo lifestyle tha wo tha fast food ke around based, frequently eating pizzas and burgers and चॉकलेट चिप ब्राउनीज. तो वजन तो बस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही गया क्योंकि पढ़ाई पे फोकस हो रहा है तो बैठी रहें और खाती रहें तो फिर यही होता है. तो जब इन्होंने ये सोचा कि मैंने अपने करियर को परसू करना है बॉलीवुड में, दैट इज व्हेन शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वेट लॉस. बिकॉज ऑफकोर्स इट वॉज वेरी ऑब्वियस दैट अनलेस शी डू अ वेट लॉस शी विल नॉट बी एबल टू कम टू द स्क्रीन. देन शी कॉल्ड हर मॉम अमृता सिंह को उन्होंने कॉल किया. अमृता सिंह से उन्होंने कहा कि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हूँ क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने बॉलीवुड में आना है. एंड That's when that journey, जो भी उनको अमृता सिंह ने सपोर्ट दी या रिजीम बनाया उनका या जो कुछ भी किया. एंड द फाइनल ईयर इन कॉलेज शी स्पेंट कंप्लीटली डेडिकेटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग हर हेल्थ. वर्कआउट स्ट्रैटेजीज बनी, न्यूट्रिशनल ओवरहॉल हुआ और रिजल्ट मिला वो सारा अली खान जो हमें नजर आई केदारनाथ में. अब केदारनाथ और उसकी जर्नी आगे बढ़ते हुए विद दिस ब्यूटिफुल नंबर.

और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है आपके लिए पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की तरफ से. अगर आप के पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपकी यू नो कवरेज में नहीं आता, वो जो नेटवर्क होता है हमारा उसमें नहीं आता, या फिर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं है, तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए एक प्रोग्राम विच इज़ पैशन हेल्थ डायरेक्ट. फॉर जस्ट $85 आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं. एंड वंस यू गेट दैट मेंबरशिप तो क्या होगा जी, यू गेट प्राइमरी केयर विजिट्स, फॉलो अप एंड प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक डिजीज एंड मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ भी अवेलेबल होगी वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, और उसके साथ साथ केयर कोऑर्डिनेशन प्लस 20% सेविंग्स ऑन एलिजिबल सेल्फ पे लैब्स, imaging and diagnostic services. So this is the Passion Health Direct program for $85 a month. This is not a health insurance plan. Some restrictions do apply, so call them and check them whether you are eligible to be a participant in this one or you can become a member. That number is, you can call them or you can also send them a text and they will get back to you. That number is 214-666-6259. 214-666-6259 is the number. Ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is passionhealthphysicians.com. तो जी इसके साथ हम बात कर रहे थे कि वेट लॉस की जर्नी हो गई, अब केदारनाथ की बारी आई और केदारनाथ से उन्होंने अपना डेब्यू लिया. जब डेब्यू किया उन्होंने तो अभिषेक कपूर ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी और सारा के ऑपोजिट थे सुशांत सिंह राजपूत. सारा ने मुक्कू का किरदार अदा किया था और एक रोमांस बैकड्रॉप था इस फिल्म का, विच वॉज बेस्ड ऑन दी केदारनाथ फ्लड्स जो आए थे और किस तरह से डेविस्टेशन हुई थी. शी वॉज अ न्यू कमर, बट वट यू नो ऑफकोर्स आप इमेजिन खुद ही कर सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पहली फिल्म है, द पेरेंट्स आर ह्यूज स्टार्स, दैट वो तो ऑलरेडी वो बर्डन है, वो ऊपर से वो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी ह्यूज स्टार हैं, वो भी बर्डन है, ऊपर से पटौदी फैमिली का बर्डन है कि भाई बहुत बड़ा खानदान है. और इस ऐसे में जो सारा हैं वो आई, कंपैरिजन तो ऑफकोर्स बनते ही हैं, बट शी ट्राइड टू कीप हर एनर्जेटिक एंड बबली पर्सनालिटी ऑन स्क्रीन और ऑडियंस ने इमिजिएटली उनको नोटिस किया. सो सारा एंड एवरीबडी वाज सेइंग कि या शी हैज अ स्क्रीन प्रेजेंस. और स्पेशली जो कॉम्प्लीमेंट मैं समझती हूँ कि सारा वाज सारा बींग सारा ऑफकोर्स, बट शी वॉज वेरी लकी टू कम विद सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज जो कैलिबर एक्टिंग में सुशांत सिंह राजपूत का था, ही वॉज अ न्यू कमर, ऑलमोस्ट न्यू कमर इज वेल, बट ही वॉज अ वेरी इस्टेब्लिश्ड स्टार, आई थिंक ही वॉज अ वेरी गुड स्टार. और जो थोड़ी बहुत कमी बेशियाँ कहीं रह जाती थी वो मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत बड़ी ही खूबसूरती से कवर अप कर देते थे. सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल जोड़ी जो हमें नजर आई थी मूवी केदारनाथ में.

और फिर केदारनाथ से सीधा पहुंची वो सिम्बा के सेट्स पे. जी हाँ, रोहित शेट्टी की मूवी सिम्बा उन्होंने अगली मूवी करी जो कि रिलीज हुई मेरे ख्याल 2018 में ही हुई थी वो मूवी भी रिलीज. एंड देन द जर्नी बिगैन, केदारनाथ, सिम्बा, उसके बाद नजर आई वो लव आजकल में, कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर की, मतलब हर उसमें वो एक डिफरेंट रूप अपना दिखा रही थी. देन वी सॉ जो है कुली नंबर वन, देन अतरंगी रे, देन जरा हट के जरा बच के, गैस लाइट, ए वतन मेरे वतन, ये मूवीज और इसके साथ जो है कुछ और खूबसूरत मूवीज में वो हमें नजर आ रही हैं. अभी भी दो तीन मूवीज उनकी लाइंड अप हैं, बट दैट इज द जर्नी दैट शी हैज डन. बट ऑफ कोर्स शी हैज डन सम रियली गुड वर्क एंड सम रियली नाइस म्यूजिक हैज बीन पिक्चराइज्ड ऑन हर. यही जर्नी है उनकी स्पॉटलाइट की. अगले मेरे पास दो तीन गाने हैं आपके लिए जो मैं प्ले करूंगी और उसके बाद 3:30 तक हम सारा अली खान की बात करेंगे और उसके बाद एक और स्पॉटलाइट डलने वाली है एक बहुत ही कमाल के प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे. वो कौन है? इंतजार.

और अगर आप क्रेव कर रहे हैं फ्लेवर्स दैट यू ग्रू अप विद, तो होको, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव्ड फूड ब्रांड, इज नाउ ओपन इन फ्रिस्को. कहाँ पे जी? 2693 प्रेस्टन रोड, स्वीट 1000 है, फ्रिस्को में लोकेटेड. ये वो जगह है जहां आप इंजॉय कर सकते हैं देयर फेवरेट्स लाइक चना पूरी, सैंडविचेस, डिलिशियस करीज, और साथ ही साथ देयर लेजेंडरी होको कोल्ड कोको. एवरीबडी स्वेयर्स बाय इट, यू हैव टू गो एंड ट्राई. उनका मेन्यू आपने चेकआउट करना है तो hoko.us, HOCCO, hoko.us is where you need to log on. और उनका मंत्रा बड़ा सिंपल है, आप भूखे आइए और टेस्ट ऑफ इंडिया के साथ वापस जाइए. अच्छा, अब मैं आपके लिए दो स्पेशल्स बता रही हूँ जो कि होको आजकल रन कर रहे हैं. इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव अ वैलिड स्टूडेंट आईडी, देन गाइज यू गेट 20% स्टूडेंट डिस्काउंट व्हेन यू गो देयर. एंड इफ यू आर एन एम्प्लॉय देन एंड यू हैव अ वैलिड एम्प्लॉय आईडी, देन ऑन लंच पैक्स अवेलेबल मंडे थ्रू फ्राइडे ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, यू ऑल्सो गेट 20% डिस्काउंट. सो ये दो जबरदस्त स्पेशल्स चल रहे हैं होको पे. वंस अगेन, लॉग ऑन टू hoko.us, hoco.us. अब ये जो गाना है, ये एक पुराने गाने का रीमिक्स है जिसमें हमें नजर आई सारा अली खान, टेकन फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो दो.

0: और इसी के साथ हम कर रहे हैं बॉलीवुड स्पॉटलाइट का रुख चेंज, और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो स्पॉटलाइट डलेगी एक ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे जिन्होंने हमें दी कुछ शानदार फिल्में। स्टे ट्यून्ड, आई हैव सो मच मोर फॉर यू।
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest. Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 और ईमेल info@seemamehtalawfirm.com।
3: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
4: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
5: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
6: क्या मतलब?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
6: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
10: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
9: Fear not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
12: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
11: नहीं।
12: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
11: नहीं।
12: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
11: वो भी नहीं।
12: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
15: Jud jao apni dharti se. Desiyon ka sachcha radio channel. Fun Asia, 104.9 FM.

आज का ये शो जो भी एक डेढ़ घंटा है हमारे पास, ये नाम है एक ऐसे फिल्म मेकर के जिन्होंने बॉलीवुड को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया बल्कि उनकी जो फिल्में हैं वो स्टोरीज़ हैं, वो स्टोरीज़ हमें दी जो आप कह लीजिए कि कई बार ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, कुछ चीज़ें याद रहती हैं आपको, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रॉब्ली शेपिंग योर पर्सनालिटीज़। आज हम बात करेंगे फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और स्टोरी टेलर विधु विनोद चोपड़ा की, एक ऐसा शख्स जिन्होंने ना सिर्फ हमें हंसाया बल्कि ही मेड अस क्राई विद इंटेंस मूवीज़, ही मेड अस यू नो He made us think of a lot of things. और कभी कभी तो ऐसी फिल्में आई कि जैसे 1942 अ लव स्टोरी है, एक आपका कनेक्शन बन जाता है उस सारी जर्नी और उस स्ट्रगल से। परिंदा फिल्म देख लीजिए, बहुत सारी फिल्में उनकी आई जो कि बहुत ज़्यादा हमारे साथ कनेक्ट की। सो विधु विनोद चोपड़ा का सिनेमा बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, इमोशंस, रियलिज्म, एंटरटेनमेंट और बेहतरीन कैरेक्टर्स। परिंदा मूवी हो, 1942 अ लव स्टोरी हो, मिशन कश्मीर हो, मुन्ना भाई MBBS हो, लगे रहो मुन्ना भाई हो, थ्री इडियट्स हो, PK हो, संजू हो, ये वो फिल्में हैं जो कि विधु विनोद चोपड़ा के या तो कलम से निकली या फिर उन्होंने डायरेक्ट की या फिर उन्होंने इनको प्रोड्यूस किया। कहीं ना कहीं उनका विजन इन मूवीज़ में शामिल रहा।

ऑलराइट, गिव अवे लेकर आई हूँ आपके लिए। अभी हमने विधु विनोद चोपड़ा की बात करनी शुरू की है, तो इस गिव अवे के साथ आगे बढ़ेंगे। गिव अवे आया है जी चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से, जो कि एलन में लोकेटेड है, ऑफ मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन। आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं chandigarhbites.com, यहाँ आपको उनका मेन्यू मिलेगा, उनके स्पेशल्स मिलेंगे। और अच्छा होता है कि हम प्रिपेयर होके जाते हैं कि वहाँ पे क्या डिशेज मिलती हैं, ताकि ऑर्डरिंग आसान हो जाए। अच्छा, एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ अबाउट देयर स्पेशल लंच थाली, जो कि मंडे थ्रू फ्राइडे लगाई जाती है जी। लंच स्पेशल है ये, और रोटेटिंग डिशेस होती हैं, तो बिल्कुल बोर नहीं होंगे आप। डेली भी जाइए तो आपको कुछ नया मिलेगा उनकी लंच थाली में। सो दैट इज द स्पेशल थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन। एंड नाउ यू हैव अ चांस टू विन $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर एट चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन। तो विधु विनोद चोपड़ा की बात हो रही है, आप मुझे कॉल करके बताइए 972-235-5555 पे। विधु विनोद चोपड़ा की कौन सी मूवी आपको लगती है सबसे ज्यादा अच्छी? अच्छा, मैं आपको ऑप्शंस देने वाली हूँ, वैसे तो बहुत सारी उनकी मूवियां हैं, लेकिन इनमें से सेलेक्ट कीजिए: थ्री इडियट्स, मुन्ना भाई, पीके, संजू या

इन 1942 अ लव स्टोरी. अच्छा चलिए मैं आपको कहती हूँ, अपनी मर्जी की कोई मूवी बता दीजिए, चाहे वो उन्होंने डायरेक्ट की हो, प्रोड्यूस की हो या लिखी हो, आपको खुली आजादी है जी. बताइए विधु विनोद चोपड़ा की कौन सी मूवी है आपकी मनपसंद.

जी हाँ जी, चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन की तरफ से, जो कि मैकडर्मट ड्राइव ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन में लोकेटेड है, आपके लिए ये $10 ऑफ आया था योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर। और विदु विनोद चोपड़ा की बनाई हुई किसी फिल्म का आपसे पूछा था कि आपकी कौन सी पसंदीदा फिल्म है, जो नाम आए, अच्छा कोई 6-8 कॉलिंग आई और सबने ऑलमोस्ट अलग अलग नाम दिए। एक नाम जो कॉमन नजर आया वो था मुन्ना भाई MBBS, जो कि दो लोगों ने बताया। एक नाम जो कॉमन था वो था 3 Idiots, जो कि दो लोगों ने बताया। और उसके अलावा 1942 अ लव स्टोरी और लगे रहो मुन्ना भाई, ये दो चार फिल्में थी जो कि बार बार तस्करे में आई इन 7-8 कॉलों में जो हमने रिसीव की। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस सीक्वेंस में आप कॉल करते हैं उसी सीक्वेंस में आपका नंबर डाला जाता है और फिर एक नंबर पिक किया जाता है। एंड दैट नंबर जो आज के हमारे लकी विनर है, मुझे एक बार अपना लिस्ट खोलने दीजिए, वो है जी कॉलर नंबर 6, दैट इज सुकेना। सो सुकेना कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये चंडीगढ़ बाइट्स एंड एलन का गिव अवे। दिस इज अ $10 ऑफ योर डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर। दो दिन का हमें टाइम दीजिए, नाम और नंबर आपका रेस्टोरेंट पहुंचाएंगे और फिर आपके पास 7 दिन का वक्त है टू अवेल योर गिव अवे। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज। इट रियली रियली मैटर्स कि आप टाइम निकालते हैं, कॉल करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। गानों का सिलसिला यूं ही जारी है, विधु विनोद चोपड़ा पे डाली है हमने आज की स्पॉटलाइट।

अगर आप टेक्सस में बिजनेस ओनर हैं तो जी आई एम श्योर कि हर वक्त ही हमें स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस की जरूरत रहती है, स्पेशली एज अ बिजनेस ओनर. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, देन तारा कमर्शियल एनर्जी इज वेयर यू नीड टू कॉन्टैक्ट. दे प्राउडली सर्व टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002. कंपेटिटिव रेट्स हैं उनके पास, रिलायबल सर्विस है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट दे हैव कस्टमाइज्ड एनर्जी प्लान्स. तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको सुन के उसके हिसाब से एनर्जी प्लान कस्टमाइज किया जा सकता है. So all you have to do is give them a call, talk to them about your requirements and see what they have to say. That number is 844-428-2808. 844-428-2808 unka number, ya phir taraenergy.com, which is T-A-R-A, taraenergy.com is where you need to log on. Vidhu Vinod Chopra pe spotlight daliye humne Bollywood spotlight mein right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Aur Vidhu Vinod Chopra ki jo kahani hai, wo kisi filmi kahani se kam nahi hai. उनका कनेक्शन कश्मीर से रहा और सिनेमा की दुनिया में उनकी जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी. ऐसा नहीं है कि जीवन फाइंड उन्होंने एक मूवी डायरेक्ट कर ली और हो गई कहानी खत्म. उन्होंने फिल्म मेकिंग पढ़ी एट द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच इज FTII, और अर्ली डेज में उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो एक कन्वेंशनल फिल्म मेकर ना है और ना कभी बनना चाहते हैं, बिकॉज उनका फोकस था ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग. और इसका प्रूव हमें कैसे मिला, उन्होंने एक अर्ली अपने करियर में शॉर्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था एन एनकाउंटर विद फेसेस. और ये वो मूवी थी जो कि, देखिए मैं आपको एग्जैक्टली ईयर बताती हूँ ये मूवी कब आई थी, 1978 में आई थी ये एन एनकाउंटर विद फेसेस. और ये मूवी के लिए नॉमिनेशन मिली उन्हें, डॉक्यूमेंट्री मूवी नॉमिनेट हुई फॉर ऑस्कर्स. और वहां से मतलब उन्होंने तो अपनी तरफ से एक शॉर्ट मूवी बनाई थी, अभी निकले थे अपने ग्रेजुएशन करके एंड ही वाज एक्सपेरिमेंटिंग, और वहां से वो एकदम से बिगेस्ट कमर्शियल सक्सेस का हिस्सा बन गए. बिकॉज वंस हिज मूवी वाज नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर देयर वाज एब्सोल्युटली नो लुकिंग बैक.

अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म एन एनकाउंटर विद फेसेस के साथ नॉमिनेशन पाई विरू विनोद चोपड़ा ने 1978 के ऑस्कर्स में, और उसके बाद उन्होंने दो फिल्में बनाई, सजाए मौत और साथ ही साथ जाने भी दो यारों, और तीसरी थी 1986 में, ये कहानी है 81 की, 81 में आई उनकी सजाए मौत, 83 में जाने भी दो यारों और 86 में खामोश। और ये तीनों फिल्में जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा काम किया इन्होंने, बट नॉट समथिंग दैट वुड एस्टैब्लिश हिम एज अ मेन स्ट्रीम डायरेक्टर। ये सारी मूवीज इन्होंने खुद डायरेक्ट की थी एक्सेप्ट जाने भी दो यारों, जिसकी वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थे और एक्टर थे उसके अंदर। अच्छा, अब इन्होंने जो है थोड़ा सा और अपना गेम अप किया और अब इन्होंने तीनों काम किए, यानी कि ही वॉज द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर एंड द राइटर ऑफ दिस मूवी, जिसने उनको एक अलग लीग में लाके खड़ा कर दिया। एंड दैट मूवी वॉज मूवी परिंदा। परिंदा में हमें नजर आए थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, और ये फिल्म ने बॉलीवुड को एक बिल्कुल डिफरेंट क्राइम ड्रामा दिया। परिंदा की दुनिया ग्लैमरस नहीं थी, कोई ऐसे मतलब बहुत कुछ नहीं था, वॉज डार्क, इट वॉज ग्रिटी, इट वॉज इमोशनल, और सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थे। अगर आपने परिंदा देखी होगी तो आपको अंदाजा होगा कि भाई इसमें सही कौन है, गलत कौन है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी सही है, वो भी सही है वाली सिचुएशन, कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन है इस फिल्म के अंदर। और स्पेशली नाना पाटेकर का जो कैरेक्टर था अन्ना, वो बॉलीवुड का मोस्ट मेमोरेबल विलन आप कह सकते हैं, उसको काउंट किया जाता है। और यही विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मेकिंग की खासियत है कि विलन भी सिर्फ विलन नहीं होता, उनके पीछे की जो पर्सनैलिटी होती है, एक साइकोलॉजी होती है, एक स्टोरी होती है, जो कि वो बड़ी ही खूबसूरती से बयान करते हैं। अच्छा, परिंदा का तो मैं गाना आपके लिए प्ले कर चुकी हूँ तुमसे मिलकर, तो अब आगे बढ़ते हैं आपके लिए उनकी बनाई हुई फिल्मों के कुछ गाने बैक टू बैक प्ले कर रही हूँ। सो दिस वन इज टेकन फ्रॉम द मूवी लगे रहो मुन्ना भाई।

जी जर्नी का उनका बात कर रहे थे, परिंदा तक पहुंचे थे. परिंदा फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया गया और उसको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए और बेस्ट फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स के लिए. और फिल्म को बाद में इंडियन सिनेमा की इम्पोर्टेंट क्राइम फिल्म्स में रिकग्नाइज किया जाने लगा. लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने यहाँ से मारा यू टर्न. 1989 में उन्होंने परिंदा फिल्म रिलीज की, फिर 5 साल की खामोशी कंप्लीट. मतलब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बनाया, लेकिन उसके बाद 1994 में ही केम बैक विद अ मूवी 1942 अ लव स्टोरी एंड दैट कंप्लीटली changed his perception once again. अब ऐसा लग रहा था कि वो डार्क फिल्में क्राइम फिल्म्स बनाते हैं, बट 1942 अ लव स्टोरी के साथ उन्होंने दिखा दिया कि वो रोमांस को भी बहुत ही डेलिकेटली हैंडल कर सकते हैं अलॉन्ग विद ऑल द क्राइम एज वेल एज द पेट्रियोटिज्म जो कि उस मूवी में दिखा था और वो जो रेवोल्यूशन थी वो सब कुछ. 1942 अ लव स्टोरी ने एक बार फिर विधु विनोद चोपड़ा को वो स्टैंडिंग दी जो कि उनको और मजीद एस्टैब्लिश करती रही इंडियन सिनेमा में. सो दिस सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम 1942. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स आई हैव हर्ड, वन ऑफ माय टॉप 10 फेवरेट्स में आता है ये. कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो.

विद द सक्सेस ऑफ 1942 लव स्टोरी, फिर मूवीज आई, चार साल का फिर गैप रहा, फिर मूवी आई करीब, और 2000 में 1998 में करीब आई, 2000 में मिशन कश्मीर आई, 2003 में आई मुन्ना भाई MBBS, और मुन्ना भाई MBBS से विधु विनोद ने हमें अपना एक नया रूप दिखाया, एंड दैट वाज ह्यूमर. हमने देखा कि उन्होंने किस शानदार तरीके से हमें ह्यूमर शो किया, चाहे वो सर्किट का किरदार हो या फिर वो मुन्ना भाई का किरदार हो. ही वाज एब्सोल्युटली फनी इन द मूवी. तो वहां से एक नया जॉनर उन्हें मिला कि ये भी बना सकते हैं और बड़ा कमाल बना सकते हैं. ऑल्दो मुन्ना भाई वाज नॉट डायरेक्टेड बाय हिम, इट वाज रिटन एंड इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय हिम. और उसके बाद आई परिणीता. परिणीता ने फिर अपनी जगह बनाई. लगे रहो मुन्ना भाई, मतलब ये वो फिल्में हैं जो कि उनके लिए जिन तमाम मूवीज ने उन्हें अवार्ड्स दिलाए, चाहे वो सम एंटरटेनमेंट का अवार्ड हो या कहीं ना कहीं द मूवीज गॉट नॉमिनेटेड फॉर समथिंग और द अदर इन द अवार्ड सेरेमनीज. और फिर आई मूवी थ्री इडियट्स ने बिल्कुल, मतलब मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट वी हैव सीन इन द लॉन्गेस्ट टाइम वॉज थ्री इडियट्स, जब वो रिलीज हुई थी. एंड किस खूबसूरती से उन्होंने बच्चों के, लड़के लड़कियों के, स्टूडेंट्स के, कॉलेज स्टूडेंट्स के इशूज के बारे में डिस्कस किया, स्टडीज के बारे में डिस्कस किया. और फिर हमें वो झलक एक बार फिर देखने को मिली जब उन्होंने 12th फेल बनाई, जब एक बार फिर उन्होंने एजुकेशन के मसाइल और जो भी आपके मसले थे शख्स के जिनके ऊपर उन्होंने मूवी बनाई थी उसको कवर किया था. सो वी आर गोना हेड ऑन विद दिस सॉन्ग फ्रॉम Three Idiots, this is Zubi Dubi.

0: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
1: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो. जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री. शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय. पास या बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: Hoko.
1: Hocho.
2: It's Hoko.
3: अरे बस भी करो यार.
2: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
3: नाम Hoko हो या Hocho क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक Hoko अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरीड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
0: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ.
0: सिंपल बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर.
6: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा.
0: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
6: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
5: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
7: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
0: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम. 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को.
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
11: तुमसे मिलके दिल का है.
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
12: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो.

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran में मेरा और आपका साथ अभी 20 मिनट और 5 बजे तक आपके साथ मौजूद हैं and it is time now to connect you with our URA Debt Relief segment. हमारे साथ मौजूद हैं URA Debt Relief के अमन जी जो हमें बताएंगे कि URA आपको कैसे हेल्प करता है हमें to make the right financial choices. Let's welcome him on the airwaves of Fun Asia. Good afternoon, Aman ji. How are you doing? Aman ji, can you hear me? Alright, मुझे लगता है कि कुछ आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है. नो वरीज, आई एम गोइंग टू कनेक्ट हिम वन मोर टाइम एंड व्हाइल वी आर गोइंग टू डू दैट लेट अस लिसन टू दिस नेक्स्ट नंबर.

0: All right. And with that, we have Amanji with us from URA Debt Relief. Let's welcome him on the waves of Anisha. Good afternoon, Amanji. How are you doing?
1: All good. Anisha सुनने वाले सभी listeners को URA और अमन की तरफ से नमस्कार. So दोस्तों, एक बार फिर से बात याद कराना मेरा फर्ज है कि मिड ऑफ द मंथ हो गया है. बहुत सारे दोस्तों ने वो गलती कर ली होगी, बहुत सारे दोस्त अभी सोच रहे होंगे, लेकिन आपकी वो गलती रोकी जा सकती है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट करने जा रहे हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट देने का मतलब है कि 40% 22% 28% इंटरेस्ट पे करना, जिससे आपका क्रेडिट कार्ड का कर्जा कभी नहीं उतरेगा. तो अगर आप वाकई परेशान हैं कि यार क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर ही नहीं रहा है, जितना इस महीने मैं मिनिमम पेमेंट देता हूं या देती हूं, अगले महीने फिर से वही अमाउंट कन्वर्ट होके आ जाती है, चाहे आप उस क्रेडिट कार्ड को नहीं भी खर्चते, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ वो अमाउंट फिर से बढ़ जाती है. तो उस जंजाल से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो कॉल कीजिए URA को. URA आपके सारे क्रेडिट कार्ड की एक पेमेंट बना देगा और उसमें से आधा कर्जा माफ हो जाएगा. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड का आधा कर्जा, आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो सकता है. अगर आपकी गाड़ी का लोन है, जो गाड़ी रिपोजेस हो गई है या टोटल हो गई है, इंश्योरेंस ने क्लेम दिया या नहीं दिया या पूरा नहीं दिया, जो बाकी अमाउंट है उसको भी अगर आप माफ करवाना चाहते हैं, या फिर पर्सनल लोन ले रखा है जैसे किचन रेनोवेशन, फ्लोरिंग, या फिर आपने यूरोप ट्रिप लगाया था, लेकिन अब यूरोप तो ट्रिप तो हो गया खत्म, पिक्चर्स फेसबुक पर अपलोड हो गई, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड की या पर्सनल लोन की पेमेंट देनी भारी लग रही है, उसको भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं, माफ करवा सकते हैं. जस्ट गिव अस अ कॉल, हमें कॉल कीजिए, आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो जाएगा नेगोशिएट के जरिए, क्योंकि ये बैंक्रप्सी नहीं है. सो हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914 1-888-888-9914. या फिर आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, कॉल मी डायरेक्टली 9167763555 9167763555 अगेन 9167763555. और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. तो मिनिमम पेमेंट करने से पहले कॉल कीजिएगा, आधा कर्जा उड़न शुरू.
0: Thank you so much, Amanji, for connecting with us this afternoon. We will talk to you next time.
1: Thank you.

यू हैव सम बॉक्सेस दैट यू नीड टू शिप, यू हैव अ कार दैट यू नीड्स टू मूव, या फिर पूरा घर मूव करके आप कहीं मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो SFL Worldwide इज हु यू नीड टू कॉन्टैक्ट. दे गिव यू कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज, नॉट ओनली विद इन द US, नॉट ओनली टू इंडिया, बट एनी वेयर इन द वर्ल्ड. दैट इज वाई इट इज SFL Worldwide. SFLWorldwide.com इज वेर यू नीड टू लॉग ऑन टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, या फिर 1-800-691-2335 is the number to call. 1-800-691-2335. और अब वक्त हो चला है आपको वेदर अपडेट देने का. वी आर अबाउट 15 मिनट्स अवे टू द एंड ऑफ द शो. और आज है ट्यूसडे सितंबर द 15th, 4:46 PM इन द स्टूडियो. और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 99 डिग्रीज, हाउएवर इट फील्स लाइक 105 राइट नाउ. दिन रहा सनी हॉट विद अपर्स इन ऑफकोर्स 90s, हीट इंडेक्स वैल्यूज अप टू 107. शाम रहेगी क्लियर, लोज इन दी लोअर अपर 70s. आज का पॉलन काउंट इज 11.6 विच इज एक्सट्रीमली हाई, सो प्लीज टेक योर रेमेडीज, जो भी आप लेते हैं दवाई या एनीथिंग, जो आपको शहद या एनीथिंग जो आपको सूट करता है. यूवी इंडेक्स इज 8 विच इज वेरी हाई, मीडियम टू हाई. और अपनी सनस्क्रीन हैंडी रखिए, हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. डोंट वॉन्ट दोज सिवियर हेडेक्स एंड द इशूज दैट कम्स विद हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन. सनराइज आज का हुआ 7:09 सुबह, जबकि आज का सनसेट होगा 7:33 PM. दैट वॉज योर वेदर फोरकास्ट.

0: And with that, it is time now to give you the currency update. US dollar kahan stand kar raha hai with respect to other currencies in the world. Euro is waqt hai ji 0.86 pe, jabki British pound is trading at 0.74. Indian rupee 95.97. Canadian dollar 1.39. Jabki Pakistani rupee 277.37 Pakistani rupees are trading for one US dollar. Nepali's rupee 153.62 pe stand kar raha hai. And Bangladeshi taka 123.03 Bangladeshi takas are trading for one US dollar. With that, gold price update देते हैं आपको. Gold price per ounce right now, according to goldprice.org, is $4,293.96. जबकि gold price per gram right now is $138.05. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 59 सेंट्स की कमी हुई, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $18.16 की कमी देखने को मिली. But that's pretty much all that we have for you, where your finance matters, right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. विनोद चोपड़ा पे हमने आज डाली थी स्पॉटलाइट. ये फिल्म अभी उनकी रिलीज हुई, मतलब इतने सालों में भी उनका टच खत्म नहीं हुआ. दिस वन ग्रैब्ड हिम लॉट ऑफ नॉमिनेशंस. दिस इज कौन सा 12th फेल.
1: पत्ती जला रात भगा पासा पलट दे बोर्ड उलट दे.
2: अरे उठ बाजी ले अपने हाथ.
3: टाइम जा रहा है भाई तो करे रीस्टार्ट.
4: रीस्टार्ट.

जी, और इसी के साथ आपको बता दी चलूं जी, 4-time टेड एक्स स्पीकर एंड अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठा आर कमिंग टू डैलस फॉर अ पावरफुल करियर ग्रोथ वर्कशॉप. और क्या होगा जी इसके अंदर, दे विल टॉक अबाउट हाउ टू रीपोजिशन योर वैल्यू, स्ट्रेंथन योर लीडरशिप प्रेजेंस, और साथ ही साथ हाउ टू एक्सेलरेट योर करियर विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. तो अगर आप डैलस में एक प्रोफेशनल हैं, जो कि कभी कभी हो जाता है विद ऑल दिस अनसर्टनिटी जो चलती रहती है हमारे, यू आर स्टक और यू आर वंडरिंग इफ AI इज टेकिंग ओवर द वर्क स्पेस, हाउ यू कैन मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल, देन दिस वर्कशॉप इज फॉर यू. इट्स हैपनिंग इन डैलस ऑन September 19th. आप रजिस्टर कर सकते हैं बाय लॉगिंग ऑन टू प्ले इट full.com/Dallas. Once again, that is playitfull.com/Dallas. This is where you start building your powerful career transformation story. So do log on, register for this workshop and see you there September 19th. Isi ke saath, it is time to give you the traffic update before I log off. Is waqt hume ek do incidents actually major nazar aa rahe hain. One is at IH30 towards FM 548 eastbound, jiski wajah se one lane is blocked and the severity of this incident is reported high. Abhi ye incident verify hua hai, to most probably aapko yahan pe bahut sara backup dekhne ko milne wala hai agle aadhe paune ghante mein. There is another one that is verified just now, which is at IH30 again towards First Avenue westbound, jiski wajah se two lanes are blocked. तो अगर आप यहाँ पे भी पहुँचने वाले हैं या आ रहे हैं तो आपको बहुत सारा बैकअप यहाँ भी देखने को मिलेगा. द सेवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई एज वेल. बट दैट्स ऑल दैट आई कैन सी वेयर ट्रैफिक इज कंसर्न्ड. आज का दिन हमने बॉलीवुड स्पॉटलाइट डाली विद विनोद चोपड़ा और सारा अली खान पे. कल मिलूंगी आपसे एक बार फिर. वेंसडेज इज डेडिकेटेड टू रोमांटिक मेलोडीज, पॉप फ्रीक्वेंसी, टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज अकॉर्डिंग टू द TRP चार्ट्स, अवार्ड विनिंग म्यूजिक दैट इज ट्रॉफी ट्रैक्स एंड सो मच मोर, ऑलवेज लाइंड अप फॉर यू एट आफ्टरनून Right Time with Sunehri Kiran. Bane rahiye, have a lovely rest of your evening. Marvin is coming up to entertain you.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Documents ya parcel bhejni hai?
7: Haan.
6: Ghar relocate karni hai?
7: Haan.
6: Gaadi bhi transport karna hai?
7: Haan, bhai, haan.
6: Toh phir tension kyun le raha hai? SFL Worldwide ko call kar.
8: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. Sif India nahi, USA aur duniya bhar mein. Trusted shipping aur moving services. SFL Worldwide, har move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
9: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189 क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS 926641.
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूं.
15: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
16: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
15: वेट, इतना सब और प्राइस?
16: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
17: मैं हीरो.
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
18: Kya matlab?
19: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
19: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
18: Ab to karna hi padega, madam.
20: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
21: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
22: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम और कॉल 4697343338. 4697343338. माई फैमिली होम लोन डॉट कॉम इज powered by by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
0: Hi, this is Sefali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

तू ही जुनून तू ही करार, टेकन फ्रॉम द मूवी धूम 3, आमिर खान, कटरीना कैफ, मोहित चौहान साहब की आवाज इज यूनिक एंड दैट्स व्हाट वी फेल्ट विद रॉक स्टार एज वेल. ऑफ कोर्स डूबा डूबा रहता हूँ इज अ गाना दो हमारे साथ हमेशा रहेगा बिकॉज ही सैंग इट सो वेल. टुडे वाज द गेम बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, सेकंड T20 दैट दे वर प्लेइंग. दो दिन पहले एक और था जो इंडिया आराम से जीत गया. आज की अगर गेम की बात की जाए, अफगानिस्तान बैटेड फर्स्ट and they could gather 159 for 8 in their 20 overs. अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो इब्राहिम ज़दरान 37 of 33. बाकी जो प्लेयर्स हैं जी छोटे छोटे रन बना के चले गए. From the Indian squad, संजू सैमसन didn't do well in the first game, but he came back with a 50, 57 of 22, 7 boundaries and 4 sixes in his inning. अभिषेक शर्मा जिन्होंने परसों बिल्कुल बंदर बना दिया था इनकी टीम का, 83 और समथिंग runs in a very short span of time, that's what he does. This time he was at 39 and then Ishan Kishan not out at 38, taking the team to 163 for 3 in 14.5 overs, winning that game as well. For now, it is one more track aur is gaane ke baad lenge chhota sa commercial break. You're listening to your evening drive time show only on Fun Asia.

0: डैड प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
1: लैपटॉप में.
0: इन्वेस्टमेंट?
1: गूगल ड्राइव.
0: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
1: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
0: डैड वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
2: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
3: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
2: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
4: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga. But chili paneer bao, kahani mein twist.
5: Chicken tikka, purani mohabbat. But burrata chicken tikka, new love.
4: And pistachio lamb chops?
5: Full on flavor ka fusion.
6: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
7: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
9: अरे यार, घर मिल गया.
10: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
2: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
10: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
2: बिल्कुल. विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
11: भूख लगी जोरों की
9: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
12: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
2: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
13: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: देखो बीमार ना कोई भी कभी भी हो सकता है, जब गोरे बीमार होते हैं ना तो वो कहते हैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई थिंक आई एम गोना टेक सम मेडिसिन एंड नॉकआउट। हमारे देशियों में क्या होता है कि अगर आपको बुखार है या आप बीमार हो गए हो तो उतना इनफ नहीं है, उसके साथ साथ आपको थोड़ा मुंह भी बनाना पड़ता है। और मेरे बड़े भैया हैं मार्टिन भैया, वो क्या करते थे कि जब छोटे थे ना तो उन्होंने बीमारी का बहाना जब बनाना, हाय मेरे को बुखार हो गया, एक्चुअली अस्थमेटिक थोड़ा सा, तो जब भी उन्होंने बीमारी का ड्रामा करना ना, ड्रामा तो उन्होंने साथ साथ करना लेटे लेटे, हाय हाय हाय हाय। मैं कहा ये ठीक है भाई, तेरा काम सही है। घर वालों भी सोचना पता नहीं क्या हो गया यार बेचारे को, पता ही सीरियसली बीमार लगता है। और हम जैसे बीमार होते भी हैं तो हमारे घर वाले कहते हैं चल चल कुछ नहीं हुआ, उठ के ना ले, ठीक हो जाएगा सब। बंदा ये बिंदास है। ना, ना, ना, मतलब इज्जत तो घर वाले ऐसी देते आए बचपन से, कमरे में आना कहना देख तेरा कमरा कितना गंदा है, कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना, कुत्ता भी जहाँ बैठता है वहां तुम उसे साफ करके बैठता है। मैं कहा माता जी वो कुत्ता बैठता है, मुझे लेटना होता है, डिफरेंस है दोनों की लाइफ में। तो तुम खोटे, इसके तो खारी तलवार है। बंदाई बिंदास है जी, नाम मार बिंदास है। 5:25 स्टूडियो घड़ी में हो चुके हैं, 5:25। जिनको 25 नहीं समझाता बता देता हूँ, 5:25 यानी कि 5:25 ट्यूजडे की शाम है जी, 15 तारीख है। और ट्यूजडे की शाम मतलब मंगलवार, मंगलवार का मतलब पता क्या, मंगलवार का मतलब है मन की बात अपनी बीवी से, नो नो नो नो नो नो नो नो नॉट डूइंग बिकॉज दैट कैन कॉज अ वॉर। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय नन अदर देन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। दे हैव मल्टीपल लोकेशंस अराउंड यू एंड देयर इज वन व्हिच इज वेरी क्लोज टू यू नाउ। अगर आपने अभी तक अपना PCP सेलेक्ट नहीं किया है, यू डोंट हैव अ फिजिशियन, देन प्लीज गेट विद देम। इनकी खासियत बहुत सारी हैं, पहली खासियत तो ये कि दे टेक द टाइम टू मेक श्योर दे स्पेंड 30 मिनट्स विद यू, एवरी कंसल्टेशन इज 30 मिनट्स एंड दे ट्राई टू गेट टू द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। उसके साथ साथ दे हैव अ ग्रेट प्लान इफ यू आर नॉट हैविंग इंश्योरेंस। देयर प्लान इज कॉल्ड द पैशन हेल्थ डायरेक्ट व्हिच इज $85 अ मंथ। दैट इंक्लूड्स योर प्राइमरी केयर, योर प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेलीहेल्थ एंड इवन लैब्स एट डिस्काउंटेड प्राइसेस। गिव देम अ कॉल 214-666-6259 या गो टू गेट ऑन द वेबसाइट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एंड पैशन हेल्थ फिजिशियंस .com। Get all the information that you need. कोई है हमारे साथ, कर लेते हैं इसके बाद। रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए, अपना बढ़ा लीजिए। गुड इवनिंग, हु इज दिस?
1: Hey, hi, this is Jahangir. Can you play Sayara song, Tari song?
0: आपने पहले भी एक बारी कॉल किया था यार, उस दिन मैं सैयारा लगा नहीं पाया था आपके लिए, तो आज आपके लिए सैयारा जरूर लगेगा। ये बताओ कि सैयारा इतना प्यार कैसे
1: भाई, आपको भाई आप, मैं पता है मैं अभी और RJ से भी बात किया, आई कॉल ऑलमोस्ट एवरीबडी, आई एम अ बिग फैन। सो वन ऑफ द लेडी वाज सेइंग नो नो नो वी शुड हैव फैंस लाइक यू। I thought I'm not annoying, I guess, right?
0: No. If you're a fan, I would love it, man. It's so hot. I can use you in my home. Yeah.
1: So I'll tell you, that movie reminds me so many.
0: Of the situationships, huh? Achcha, what is your name, brother?
1: Jahangir.
0: जहांगीर हो तो कहानी तो बनेगी ना, इतनी कहानी है जहांगीर की, आपकी क्यों नहीं होगी। और आपने कहा बहुत, आपने कहा एक बहुत बड़े फैन हो आप। मेरा ना वेयर हाउस है यहाँ पास में, उसमें गर्मी बहुत रहती है, कभी आया करो ना यार, मजे करेंगे साथ।
1: इज इट डन डन डन भाई डन।

The reason to take you back in time with that track taken from the movie Khalnayak is because you remember Ramya Krishnan, also known as Ramya Krishna, the Indian actress jinhone Telugu aur Tamil, Kannada, Malayalam films mein bahut kaam kiya, but she was also part of the Khalnayak movie that you just heard the track from. जी हाँ, ये नाम ऐसा था जिन्होंने यश चोपड़ा जी की पहली फिल्म की थी 1993 में, जिसका नाम था परंपरा. एंड उसके बाद कुछ और हिंदी फिल्में आई, सुभाष घई साहब की खलनायक जिसका आपने गाना सुना, महेश भट्ट साहब की चाहत 1996, डेविड धवन साहब की बनारसी बाबू एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ अलॉन्ग विद अमिताभ गोविंदा एंड शपथ विद मिथुन चक्रवर्ती इज वेल. आज के दिन होता है जी इनका जन्मदिन, एंड आई थॉट ऑफ रिमेम्बरिंग हर एंड रिफ्रेशिंग योर मेमोरी ऑफ राम्या, द गर्ल दैट वॉज the girlfriend slash the lover of Sanjay Dutt in the movie Khalnayak. Aaj unka janmdin hai ji, 15th of September 1970. She is 56 years of age, born in Madras, Tamil Nadu. A very happy birthday to Ramya from the team here at Fun Asia and from Banda Bandas. Aaj hi ke din, if we go back in history, today was the day when Be Without You, the single that was released by Mary J. Blige, Billboard Song of the Year 2006 and Grammy Award for Best R&B Song, Best Female R&B Vocal Performer 2007, और वो गाना था ये.

0: है कि दिस इज कमिंग फ्रॉम दी अर्विंग लोकेशन. ऑलराइट, सोचो कि दो बंदे जंगल में हैं और सामने से शेर आ गया. ठीक है, क्रिएटिव आंसर हमेशा से आप सबका दिमाग क्या बोलता है उस हिसाब से बताना. तो सोचो कि दो लोग जंगल में हैं, सामने शेर आ गया, एक ने शेर को शेर की आंखों में मिट्टी फेंक दी. ठीक है, दो लोग थे जंगल में, शेर आया, एक बंदे ने उठा के मिट्टी अपनी मुट्ठी में लेके शेर की आंखों में फेंक दी और भागने लग गया. दूसरा बंदा क्यों नहीं भागा ये बताओ. सो सवाल क्या है कि जंगल में दो लोग थे, सामने से शेर आ गया, एक आदमी ने मिट्टी उठाई और शेर की आंखों में फेंकी और भागने लग पड़ा, दूसरा वहीं खड़ा था, बताओ क्यों. आप अपना क्रिएटिव जवाब दीजिए 9722355555. कोई सही या गलत जवाब नहीं है, क्रिएटिविटी चेक करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि दिमाग के घोड़े कहाँ तक दौड़ सकते हैं. गुड इवनिंग, रेडियो का जो डायल है उसको थोड़ा कम कर लीजिए, मेरे कान में तकलीफ हो जाएगा. कौन बोल रहा है बेटा?
1: आशीष.
0: आशीष बालक कैसे हो?
1: बस चल रहा है आपके दया.
0: बस चल रहा नहीं होता है बेटा, बस चलती होती है, इसीलिए बालक बोला आपको.
1: बस वही आपकी दया, आप जैसे बड़ों की दया.
0: चलो कोई बात नहीं बेटा, ये बताओ कि अगर जंगल में दो लोग खड़े हों, एक उठा के मिट्टी शेर की आंखों में डाल दे और भाग जाए, दूसरा नहीं भागा, बताओ क्यों?
1: क्योंकि ऑलरेडी शेर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब मिट्टी तो है ना उसकी आंखों में.
0: मिट्टी तो है ना उसकी आंखों में, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं. अच्छा, आपका नाम क्या बताया आपने?
1: आशीष.
0: आशीष भाई कहते हैं मिट्टी इन आई आईज ऑफ द टाइगर, इस चक्कर में वो नहीं भागा दूसरा आदमी. चलो इस जवाब को लॉक कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन है, बाद में बताऊंगा कौन जीता इस नाम को. गुड इवनिंग फनेसिया, कौन बोल रहा है भाई? यार तुम फटाफट ढूंढ करके चले जाते हो. जो लोग रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए. करेंगे.
1: नमस्कार.
0: कार को यहीं रोकिएगा. बाकियों के लिए सूचना कि जब भी आप कॉल करते हैं, हमने अगर आपको होल्ड पे डाला है तो आपको मेरी आवाज़ या किसी और की आवाज़ या गाने की आवाज़ आएगी, तो ढप करके फ़ोन रखा मत करें. मैं भी वही हूँ जिसका आपने कई दिन इंतजार किया, जो फ़ोन करती थी हेलो वो वाला. अच्छा, आपका नाम बताइए सर.
2: मेरा नाम रविशंकर हुआ.
0: HUA लास्ट नेम हुआ. रविशंकर बताइए कि ये दो लोग थे, उसमें से एक ने तो शेर को देख के मिट्टी उठाई, आंख में डाल दी शेर की और भाग गया, दूसरा क्यों नहीं भागा?
2: और दूसरा फोटो खींच रहा था महाराज.
0: दूसरा फोटो खींच रहा था किसकी? भागते हुए की?
2: शेर की. शेर की आंख में वो क्या कर रहा है इसलिए फोटो खींचा. अच्छा, आपको दिखाने के लिए, फनेशिया के लिसनर्स को दिखाने के लिए.
0: अच्छा अच्छा अच्छा. और ये जंगल में कैमरा लेके क्यों गया था आदमी? ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है.
2: जी सर, एकदम आपने सही पकड़ा.
0: अरे अरे अरे अरे, मैंने वैसे कुछ नहीं पकड़ा अभी तक. मैं हो सकता है कि आपका जवाब पकड़ लूं. रवि शंकर हुआ, बहुत धन्यवाद आपका हुआ, आप हमारे साथ जुड़ने का. गुड इवनिंग फनेशिया, रेडियो वॉल्यूम लेस, योर अप, हु इज दिस?
3: या मैं नरेश महाजन बोल रहा हूँ.
0: क्या हाल है नरेश महाजन साहब? सब ठीक है. तो बताइए सर, दूसरा आदमी क्यों नहीं भागा? एक ने तो मिट्टी फेंकी आंखों में शेर की और भाग लिया, दूसरा क्यों नहीं भागा?
3: मेरे लगता है उसको भागने जरूरत ही क्या है, उसकी आंखों में शेर की आंखों में मिट्टी पड़ गई तो उसको भागने जरूरत ही नहीं है.
0: तो जैसी मिट्टी उतरेगी तो शेर क्या करेगा?
3: तो उसके बाद भाग जाएगा, भी पहले भागने क्या जरूरत.
0: अच्छा, पहले भागने क्या जरूरत. तो नो नीड रन बिकॉज मिट्टी इन द आई फन. ओके, ये आ गया जी महाजन साहब का जवाब. थैंक यू महाजन साहब, आपकी कॉल का बहुत बहुत धन्यवाद. गुड इवनिंग फनेशिया, आपका नाम?
4: जी मेरा नाम सौरभ है.
0: सौरभ
4: जी,
0: सौरभ भाई बताइए, शेर को दो लोग मिले, एक ने मिट्टी उठाई फेंकी आंखों में शेर की, भाग लिया, दूसरा क्यों नहीं भागा?
4: उसको लगा भाई मिट्टी तो दूसरे ने डाली है तो शेर तो उसको पकड़ेगा जिसने मिट्टी डाली है.
0: ये लॉजिक
4: तो कुछ किया नहीं, तो मैं क्यों भागूं?
0: आपने आपने वकालत की है कि इंजीनियरिंग?
4: इंजीनियरिंग करी है भाई.
0: दोस्त वकील थे
4: जी?
0: दोस्त वकील थे क्या?
4: नहीं, इंजीनियर ये लॉजिक लगाते हैं भाई, जिसने गलती करी वो भुगते हैं. बोले
0: चलो बड़े भैया, बहुत बढ़िया लॉजिक लगाया आपने, होल्ड कीजिए मेरे लिए, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर. यस, देखो ये है ना लॉजिक वाला बंदा, इनका नाम है सौरभ. सौरभ जैसे बनो. वो कह तो रहा है कि एक ने मिट्टी फेंकी और भाग लिया, अब दूसरा क्यों भागेगा? उसने थोड़ी मिट्टी फेंकी है, भागेगा वो जिसने मिट्टी फेंकी हो, अपने को क्या लेना देना. बट नॉनदलेस सौरभ, इट वॉज फन एंड दिस इनाम गोज टू यू. क्या लॉजिक मारा यार, मिट्टी उसने थोड़ी फेंकी थी, जिसने फेंकी थी वो भाग गया। करेक्ट माय जान। सौरभ होल्ड द लाइन।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
1: That magic removal ho, love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
2: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
8: Hello Texas Parivar, where do you go when bank says no? Are you self-employed and are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai and I'm just 926-641.
9: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
10: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
9: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
10: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
11: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
12: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
11: Barista House, richness of biryani bliss.
13: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

बिंदास बोलो, मैं आपको ये बता दूं कि अगर ठाकर की आवाज आ जाए कभी, जो कि हम चाहते हैं कभी भी ना आए, बट अगर आ जाए, एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व हो गए, स्लिप एंड फॉल हो गया, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा का नाम बिल्कुल अपनी जेबों में रखिए, दिमाग में रखिए, जहनों में रखिए। वंस यू सेटल इन, इफ यू आर नॉट हर्ट टू बैडली, मेक श्योर कि आप सब सिक्योर है, आपने 911 कॉल कर लिया है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से भी पहले आपको कॉल करना है अटर्नी ओमर ख्वाजा को। ही विल मेक श्योर दैट यू आर वेल टेकन केयर ऑफ, आपकी सारी जो खर्चे हैं वो उनको मेक श्योर करेगा कि आपके लिए इंश्योरेंस कंपनी से लड़े और आपको जो ड्यू क्रेडिट बनता है वो ज़रूर दिलवाए, चाहे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हों, गाड़ी का रिपेयर हो, जॉब लॉस हो, वट एवर इट इज़, ही कैन गेट दैट फॉर यू। इट्स अ फाइट दैट दे नो हाउ टू फाइट बेटर एंड लेट द एक्सपर्ट्स हैंडल इट। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज द नेम ऑफ द वेबसाइट वेयर यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड, एंड दैट इज attorneyomar.com। यू नो, पेट जो है वो, पेट और पेट्रोल ना, ये दोनों मेरे को लगता है संगठन बना के आए हैं, क्योंकि पेट और पेट्रोल दोनों बढ़े जा रहे हैं, और आपको पता है इन दोनों का एक ही आंसर है, एक ही इलाज है, साइकिल।

Hazel Crowney, also spelled as Hazel Crowney, English actress and model, जिन्होंने बहुत सारी ad campaigns में काम किया, कुछ Bollywood फिल्मों में भी किया. Born in London, United Kingdom, to English parents Karen and Phil, and she has two younger sisters. But she was the one that actually worked in Bollywood in some films and backpacking trip पे गई थी थाईलैंड में, वहाँ पे एक Indian film shoot हो रही थी. और बस उसी में एक गाना मिल गया लेके, पहला पहला प्यार, विच वॉज अ रीमेक ऑफ द ओरिजिनल वर्जन. एंड देन शी वॉज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा इन द फिल्म जानशी. देन केम सम एडवर्टाइजमेंट्स, जैसे कि पॉन्ड्स के लिए, नोकिया, HSBC, सैमसंग. एंड देन एक प्रॉपर रोल मिला इन द मूवी मेरा पहला पहला प्यार, जिसका गाना आपने सुना. टुडे मार्क्स हर बर्थडे एज वेल. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हेजल क्राउनी फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजिया एंड फ्रॉम मंदा बिंदास. और इसके साथ साथ कुछ और बर्थडेज आज हैं. एक तो हैरी का जन्मदिन है. ओ हैरी, मेरे वालों हैप्पी बर्थडे. हैरी मतलब प्रिंस हैरी यार, दोस्त है अपना, इंग्लैंड में मैं मिला था इसको. ऑल दो ये पैदा हुए थे 1984 में, मेरे साथ के ही हैं. तो जब मैं अपना गाड़ियों में घूमता था, ये लिफ्ट मांगा करते थे मेरे से. किंग्स चार्ल्स III के जो बेटे हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ. आज उनका बर्थडे है. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू प्रिंस हैरी फ्रॉम द टीम हियर एट फनेजिया एंड योर बॉयफ्रेंड. हाँ, इंग्लैंड की दोस्ती भूलना नहीं प्रिंस भाई. उसके साथ साथ another actor that's celebrating his birthday is Tom Hardy, the guy who played Bane in The Dark Knight Rises and also went in to star in movies like Venom, the lead actor in the movie Venom, if you remember that. Star Trek Nemesis mein bhi nazar aaye, Mad Max Fury Road and The Revenant as well. A very happy birthday to Tom Hardy from the team here at Funasia and from myself. Then comes the explorer Marco Polo. Ye banda 1254 mein paida hua tha, 1254. ठीक है जी. 13th सेंचुरी एक्सप्लोरर थे, नेमसेक ऑफ द स्विमिंग पूल गेम. ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कीप अ डिटेल्ड जर्नल ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस इन चाइना. और देख लो कि बीवी से दूर जाके मतलब एक्सप्लोर करना आज की प्रथा नहीं है, 1254 से चल रहा है. देन कम्स टॉमी ली जोन्स. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू हिम एज वेल. इफ यू, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो टॉमी ली जोन्स, बट इफ यू डोंट नो देन ही प्लेड द रोल एज अ यूएस मार्शल इन द फिल्म द फ्यूचरिव. देन ऑफकोर्स ही वॉज ऑल्सो इन मेन इन ब्लैक, कोलोनल Chester Phillips in Captain America, Colonel Chester Phillips in Captain America, the first Avenger. A very happy birthday to Tommy Lee Jones too. One more track, iske baad aa raha hu wapas, don't go anywhere. This is your Evening Drive Time Show, only on Funasia.

0: In the year 1978, on today's date, which was September 15th, Muhammad Ali won the World Heavyweight Boxing Championship for the third time with his victory over Leon Spinks. That is, on today's date, just the year was 1978. A little part of history that I share with you. For now, it is time to talk about something which is important, but हम लोग कोशिश मतलब यही कहते हैं कि हाँ हाँ यार ऑनलाइन देख ले, सस्ता वाला ले ले, इंश्योरेंस ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ भैया सस्ता वाला ले ले, उसके बाद लेने के देने पड़ जाते हैं क्योंकि कवरेजेस होती नहीं सही। फिर आपकी गाड़ी हो जाती है, गाड़ी चलते चलते लेट से टायर फट गया। अब टायर फट गया तो आपने कॉल किया इंश्योरेंस को, उनको बोला आपने कि भाई मुझे रोड साइड असिस्टेंस चाहिए, उन्होंने आपको बताया सॉरी सर दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर प्लान, हो गया ना काम प्लान का। तो अच्छी इंश्योरेंस, राइट प्लान्स, राइट स्ट्रक्चर इज व्हाट इज अवेलेबल विद सिनारा इंक। हुमैरा जुमानी कम्स टू दिस स्टेशन टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन एंड द अपडेट अबाउट देयर वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस। लेट्स सी व्हाट्स द अपडेट टुडे। गुड इवनिंग हुमैरा जी, हाउ आर यू एंड व्हाट्स टुडेज अपडेट?
1: गुड इवनिंग, आई एम डूइंग गुड, होप यू आर डूइंग वेल। एंड टुडेज अपडेट इज वी ऑफर ऑल काइंड ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, बट आई वांट टू हाईलाइट फ्यू ऑफ देम। If somebody is looking for a package policy for their hotel, motel, or a convenience store, they can contact me or my team. If they have more than two locations, we can write a very good master policy for them. They can contact me at 972-863-7772, 972-863-7772. They can visit my website, senadainc.com. और दे कैन जस्ट गूगल माय नेम एंड गेट ऑल द कांटेक्ट इंफॉर्मेशन।
0: नाम गूगल कीजिए जी, जो नाम है हुमैरा जुमानी HUMERAJUMANI, या फिर सिनारा इंक SENADAINC, बट आई थिंक इजियर इट इज टू रिमेंबर हुमैरा जुमानी। हुमैरा जी थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। गिव देम अ कॉल, 972-863-7772 इज देयर फोन नंबर, गिव देम अ कॉल। और जैसे हुमैरा जी ने कहा, अगर ज्यादा जानकारी आप चाहते हैं, यू वांट टू सी व्हाट ऑल services they provide as a full service insurance company, then that is available on the website sinadainc.com. One more commercial break. On the other side, there is a lot more coming back. Don't go anywhere.
2: Hey Frisco, get ready to celebrate silver like never before. Chandrika Silver by Shri Krishna Jewelers celebrates its grand launch. Discover exquisite handcrafted silver jewelry and artifacts with exciting inaugural offers and raffle prizes. Visit 7777 Warren Parkway, Suite 280 Frisco. Chandrika Silver, the tradition shines in silver.
3: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
4: Dallas has its own superheroes, fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
5: Ocho.
6: Hoko.
5: Ocho.
6: Hoko.
5: Ocho.
6: It's Hoko.
7: अरे बस भी करो यार।
6: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
7: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
8: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको, अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
7: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
13: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
13: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

देखो खुद आपने भी ये बात सुनी होगी, शुरू से प्रचार है कि फल सब्जियां खानी चाहिए, फल सब्जियां बढ़िया रहती हैं। जो बंदा फल और सब्जियां ज़्यादा खाता है उसको दवाइयां नहीं खानी पड़ती है। पर अब इन लोगों को ये कौन समझाए कि आजकल की सब्जियां और फल तो खुद दवाइयां खा के आ रहे हैं। दे टीका, दे पेस्टिसाइड, दे स्प्रे, चमकाने के लिए अलग सा तेल। मतलब आपने कभी ग्रोसरी लिया आजकल रिसेंटली देखा टमाटर की चिकनाहट कितनी है? ओए होए होए, इतना इतनी चिकनी तो चमेली भी नहीं थी जितना चिकना है टमाटर को कर दिया यार। एप्पल के ऊपर वैक्स लगाई होती है, कभी छुरी से खुरी के देखना, ऐसे लगे कैंडल बना लो आप, 10-15 एप्पल लेके आया करो, उसका निकालो वैक्स, जोड़ो उसको, कैंडल बनाओ। देखो ये होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे ज्ञान के लिए ट्यून इन यार। आप कहेंगे हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, जब आप नवनीता खेमका से एक बारी घर लेंगे तो आप उनको रेकमेंड भी करेंगे, क्योंकि बन चुकी हैं जी आपके लिए रियल्टर विद केलर विलियम रियल्टी, एंड शी इज हेयर टू सर्व योर होम बाइंग नीड्स, बाइंग हो, सेलिंग हो, या फिर आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। गेट विद नवनीता खेमका, रियल्टर विद केलर विलियम रियल्टी, विद मार्केट नॉलेज, क्रिएटिव मार्केटिंग एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। शी इज कमिटेड टू मेकिंग योर रियल एस्टेट जर्नी स्मूथ, बिकॉज एवरी होम हैज अ स्टोरी, and she'll help you write yours. Get with Navneeta right away. 347-449-4242. That's 347-449-4242. इस गाने के बाद मैं आपको बताऊंगा, आप सबने सुना है ना वो कहावत, जो डर गया वो मर गया, पर आपको नहीं पता होगा ये बनी कैसे थी। मैं बताता हूँ आफ्टर दिस सॉन्ग। Take the world and paint it white.

That was Paint the City Red, and this was बड़ी जबरदस्त सी फिल्म यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. एंड आई थिंक इट्स अ फैक्ट कि जिंदगी तो भैया एक ही बार मिलेगी, इसके बाद बार बार तो नहीं आएगी. मैंने पूछा था आपसे कि जो डर गया वो मर गया, ये बड़ी पुरानी कहावत है, पर आपको पता है ये एक्चुअली हुआ क्या था? दरअसल क्या था, जापान में दो भाई रहते थे, एक का नाम था जो, दूसरे का नाम था वो. ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है, कहीं कोई आपसे पूछ ले कि तुझे कहावतों का क्या मतलब पता, तो बता सकते हो आप कि शट अप मुझे पता है. तो आपने कहना, देखो जापान में दो भाई रहते थे, एक का नाम था जो, दूसरे का नाम था वो. ठीक है. एक रात को जो को बाथरूम आया, और उस टाइम पे क्या होता था कि बाथरूम जो है वो घर से बाहर बनाए जाते थे, दूर बनाते थे. और आपको भी याद होगा पुराने जो लोग हैं कि घर के बाहर बाथरूम हुआ करते थे. तो रात को बेचारे को जाना है, कैंडल वैंडल जलाई उसने, उसने कहा भाई को कौन उठाएगा, मैं खुद ही कैंडल लेके जाता हूँ और जाता हूँ बाथरूम करता हूँ. जब जो बाथरूम की तरफ जा रहा था, एकदम से हवा आई, कैंडल बुझ गई और आगे से भूत आ गया. जो ने भूत को देखा, डर गया, उसने आवाज़ लगाई वो को कि वो भूत आ गया. वो दौड़ा दौड़ा आया, जैसे ही वो ने भूत को देखा उसको हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया. बस तब से कहावत बन गई, जो डर गया वो मर गया.

दिल का मामला है, दिल पर अपना जोर है इस दिल पर, बट आपके पास एक जोर है कि अब आपको गाड़ी दूर नहीं लगानी पड़ेगी यार। पहले आपके पास इस पे कंट्रोल नहीं था, स्पेशली दैट पीपल लिव इन गार्लैंड। नहीं, गार्लैंड कहाँ चला गया यार माधवन। बात करनी है हमने आर्लिंगटन की, ग्रैंड प्रेरी की या फिर मैंसफील्ड की। आप लोग बहुत बहुत दूर दूर तक गाड़ी चलाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी। एक आइटम भूल जाओ तो बीवी आपको ऐसे देखती थी जैसे आपने पता नहीं क्या ही कांड कर दिया, और फिर आप उसकी तरफ मजबूरी में ऐसे देखते थे कि मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा डार्लिंग, अब दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए आ चुका है जी हिमालयन बाजार राइट इन ग्रैंड प्रेरी। एक्चुअली द लोकेशन ऐसी है, इंग्लिश हो तो ऐसी हो जैसी मेरी है, द लोकेशन ऐसी है। वो द लोकेशन जो है वो 360 और हाईवे 20 पे है, और वो लोकेशन जो है दैट सर्व्स आर्लिंगटन, ग्रैंड प्रेरी, मैंसफील्ड, ऑल ऑफ दीज एरियाज इजिली। और अगर आप 5 माइल रेडियस के अंदर हैं, 5 माइल्स इनसाइड रेडियस, देन $50 ग्रोसरी डिलीवरी मुफ्त घर पे होएगी आपके, ठीक है। $50 की ग्रोसरी खरीदिए, घर पे डिलीवरी बिल्कुल मुफ्त आएगी विद इन अ 5 माइल रेडियस। ऑल यू हैव टू डू गूगल हिमालयन बाजार, सी हाउ फार यू आर, एंड अगर आप 5 माइल के रेडियस में हैं तो हो गया ना सोने पे सुहागा। विदाउट गोइंग एनीवेयर ग्रोसरीज विल बी डिलीवर्ड टू यू। सारी साउथ एशियन ग्रोसरीज कैरी करते हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन अफगानिस्तान, यू नो, यूएई, जहां से भी आप, यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड राइट देयर एट हिमालयन बाजार। लेट मी टेल यू दैट दे ऑल्सो हैव टी, स्नैक्स, कॉफी, पकौड़े, एंड सून दे विल बी हैविंग पैटीज ऑल्सो, गर्मा गर्म वहीं खिलाते हैं आपको। मेक श्योर टू चेक दम आउट इन ग्रैंड प्रेरी, दैट इज हिमालयन बाजार फॉर यू। एक और गाना, इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। चलो पहले ले चलता हूँ इधर, फिर लेते हैं एक ब्रेक।

Basala Macha was the track taken from the movie Deva. This was Shahid Kapoor and Pooja Hegde in this one. Mika Singh ne gaya ji, Vishal Mishra sahab ke saath. And of course, beautiful numbers. Powerful number hote hain. Mika sahab ke gaane jo hote hain, usually dance number shambar to banate hain. And unique voice ke saath gift kiya ji inko upar wale ne. जब पहले आए थे तो सावन में लग लोगों ने कहा कि नाक में गाते हैं, फलाना है जी नहीं बिकेंगे. एक और आए थे हिमेश रेशमिया, लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ बोला था. बट बोथ ऑफ देम फाउंड देयर वे बिकॉज दे नेवर गेव अप. और मैंने किसी से पूछा कि यार ये प्यार में मतलब व्हाट इज़ द थिंग दैट यू लाइक अबाउट लव. कहता यार जो प्यार में एक दूसरे से ना मिलो काफ़ी देर तक तो जो तड़पन है तड़प वो बड़ा मज़ा आता है. कहता वो तड़प को जो है ना इस तड़प के चक्कर में लोग इश्क करते हैं. मैंने कहा इसमें इतना लंबा चौड़ा चक्कर क्या करना है. मैं घर में कभी पकौड़े बनाऊंगा, तेल गर्म होगा, हाथ डाल देना, वैसी तड़प कहाँ मिलनी है तुम्हें. बट अगर आप चाहते हैं कि आपको खाने की तड़प ना रहे, अच्छा खाना आपको मिले, तो वो आपको मिलेगा सिग्नेचर रेस्टोरेंट में, जो कि लोकेटेड है जी राइट इन द हार्ट ऑफ प्लेनो, स्प्रिंग क्रीक एंड 75 या स्प्रिंग क्रीक एंड अल्मा समझ लें आप, उसके बिल्कुल इंटरसेक्शन पे आपको मिलेगा. दे हैव अ बैंक्वेट हॉल, दे विल अकोमोडेट एनी ऑफ योर इवेंट्स, दैट्स द बेस्ट पार्ट. और वहाँ जा रहे हैं तो उनका जिंगर बर्गर, उनका फ्राइड चिकन, उनकी निहारी ज़रूर ट्राई करेंगे, स्पेशली देयर रोल्स, यू विल फॉल इन लव विद देम. एक गाना और, इसके बाद आके देता हूँ आपको कुछ और जानकारी, और उसके बाद अदियोस करते हैं जी आज शाम को. There's nowhere to go.

रिमेम्बर कि अगली बार आपको अगर लगे कि आ वो आ से आह तक मूव नहीं आएगी यहाँ पे, अगर आपको लगे आ मेरी पीठ अकड़ गई है, ओ मेरी लोअर बैक, ओ मेरा गोडा, ओ मेरा ये गोडा मतलब नी, यू नो घुटना जिसको बोलते हैं हमारे पंजाबी में गोडा कहते हैं गोडा, तो गोडा अगर आपका दर्द करता है, आपके पीठ में काउमाऊ होती है, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम रहती है, एंड इफ़ यू हैव पेरेंट्स हु आर गेटिंग ओल्डर एंड दे कीप कंप्लेनिंग यार समथिंग इज रॉन्ग when it comes to muscle or joints, before you take that over-the-counter pill, मैं आपको ये बोलूँगा, please get in touch with Rushi from Texas Star Rehab. He will make sure कि आप बिना दवाइयों के एकदम टनाटन तंदुरुस्त फिट हो जाएं, पहली बात. दूसरा कि he'll also make sure that he tells you exercises, gives you the right nutrition and makes you get better by just eating right and working out right. He is a physiotherapist from Mumbai, Indians, New York. बहुत सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर्स का उन्होंने मरम्मत की है जी, दे हैव गॉटन देम बैक ऑन देयर फीट एंड पेन फ्री. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज टू गेट आउट ऑफ पेन, टेक्सास स्टार रिहैब इज वन ऑफ दोज प्लेसेस. एंड नाउ दे हैव अ ब्रांड न्यू लोकेशन इन फ्रिस्को फॉर यू, जो कि आपके लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा फीचर्स लेके आया है, जैसे कि फिजिकल थेरेपी, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन, पेल्विक फ्लोर थेरेपी, मसाज थेरेपी एंड मोर. इसके साथ साथ their Irving location does the same, two locations for you. The website is texasstarrehab.com, and the best part that I like, because I've been there, and the one-on-one care that you receive with their practitioners, including Rushi, who's the owner of the practice, he's a physiotherapist for majority of his life that he's lived, you can be rest assured that you're in really, really good hands. Aaj ka waqt ho gaya ji mera aapse ijazat lene ka, because like we say ki jo आता है उसको जाना है, जो शुरू है उसको ख़त्म होना है, दैट इज़ द दस्तूर लाइफ, राइट. तो आज का मेरा शो भी अंत समाप्त हो रहा है जी, बट आपको एक बात बताना चाहता हूँ, द यूनिवर्स विल लिटरली सिट यू डाउन एंड ब्रेक यू टू हम्बल यू. कई बार अगर ऐसा लगे आपको कि सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट चल रही हैं, एवरी थिंग इज़ जस्ट ब्रेकिंग यू डाउन, इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस दैट यू डोंट सी. आपको पहले हम्बल करेगा, ब्रेक डाउन करेगा यूनिवर्स, आइसोलेट करेगा, ताकि आपको दोबारा से बिल्ड कर सके, एंड गिव यू बैक एवरीथिंग 10 times टू प्रूव हाउ पावरफुल यू आर एंड दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन. इसलिए हमें अपने आप को ट्रस्ट करना है, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, एंड कीप पुशिंग ऑन विद द फेथ दैट वी हैव. विद दैट थॉट, इट इज अ गुड नाइट आफ्टर मी, इट्स इपी द हिप्पी.